0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यशां।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पांचवी तिथि तदनुसार 26 जून 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है और आप सुन रहे हैं हमारा प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं संत संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम था पुनः। अगला गीत आइए सुनते हैं पिंकी प्रीति और प्रशांत की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कुछ भी नहीं। हमेशा तुमको चाहा और चाहा चाहा चाहा,
1: चाहा, चाहा, चाहा। चाहा, चाहा, चाहा।

0: बस तुम रहते हो।
1: अभी आप सुन रहे थे अभिजीत सिंह और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम था धड़कन। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 में हैं। अब आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: करे तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी है, प्रकृति का चमत्कार है। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा है। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहां चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहां उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
2: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
3: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
2: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
3: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
2: ये भी एक विचित्र संयोग ही था।

0: इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म, महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: Thank you.
3: How
4: are you? Happy birthday, Stephen!
5: Thank you,
4: congratulations!
5: Thank you, John. Thank you so very much.
6: Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
6: Thanks for coming in. Please come in.
3: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
2: Come. John, please come here.
3: Oh, sure.
6: Join us for a drink, please.
0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
3: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं नहीं,
2: देखिए आप धीरे रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थी। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थी कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
7: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
8: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
9: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
11: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
12: आग का गोला?
11: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ।
12: सर्दी
11: गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ, दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
12: सूरज।
11: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार,
12: बहुत आसान पूछते हो।
11: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
12: अगली बार में बहुत मुश्किल।
11: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली ही नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना? मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
12: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
11: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है,
12: वो तारा होता है।
11: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक,
12: वो रात और दिन भी बनाता है।
11: एकदम सही एकदम सही,
12: वो हमें धूप भी देता है।
11: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
12: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
11: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
12: विटामिन डी।
11: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, बहुत अच्छे शाबाश।
12: बहुत अच्छे। अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
11: हाँ हाँ बिल्कुल,
12: पेड़ों को खाना भी देता है।
11: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा, इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं।
12: धीरे धीरे घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
11: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
12: हाँ। जब ये तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
11: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
12: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
11: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
12: वो तेज चलती है, जब हम लोग खेलते
13: हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल

0: हाँ,
1: वो क्या चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
2: सर्दी।
0: ओ, ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
3: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला, लेकिन
2: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
2: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके,
2: धरती काटे चक्कर इसके,
0: लगे ये चलता जाता है,
2: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
2: सर्दी गर्मी बनते इससे,
0: ये दिन रात बनाता है,
2: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
2: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
0: सूरज ये
2: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
3: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
4: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
3: आपने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ?
3: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ? अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
3: मौसी
0: डर जाती है।
3: और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
4: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: 100 हो जाएंगे, 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजे कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। आज देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन कर रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि साहित्य के एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में उनकी रचनाओं ने भारतीयों की कई पीढ़ियों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाई है। उनका समृद्ध साहित्यिक योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उनकी अमर रचनाएं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचार युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते रहेंगे। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में जुलूसों के साथ मातम मनाया जा रहा है और मजलिसें आयोजित की जा रही हैं। राजधानी जयपुर में आकर्षक सजावट के साथ छोटे बड़े ताजियों के साथ बड़ी संख्या में मोमिन मातमी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर निकलने वाले ये जुलूस और ताजिये रात में करबला में सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में विशेष धार्मिक रस्में अदा की जा रही हैं। यहां दुआ, फातिहा और नियाज का आयोजन हो रहा है। जालौर में मेहंदी की रस्म अदा कर ताजिये मुहर्रम पोल से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों से गुजर

0: करते हुए बड़ी पोल पहुंचे हैं। यहां से इन्हें करबला के मैदान में ले जाया जा रहा है। कई स्थानों पर छबीलें लगाई गई हैं। सभी जिलों में जुलूस को लेकर स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की गई है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली में नगर निगम की ओर से बैनर और पोस्टर के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ, सुरक्षित तथा खुशहाल समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आम जन से नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 में अब आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वुमन।

0: मुंबई सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो सखी शीतल
1: और आरती का प्यार
0: भरा नमस्कार।
1: शीतल, हर इंसान जो है वो कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। जीवन जो है ये सुख और दुख का मेला है। कभी इंसान के जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है। लेकिन इन दोनों चीजों में हमें सिर्फ उसको पकड़ के नहीं बैठना है, बल्कि उससे बाहर आने की कोशिश करनी है। अगर बहुत ज़्यादा सुख है और हम उस सुख में ऐसे हो जाते हैं कि हम अपने आसपास नहीं देखते और बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है, लोगों को हम इग्नोर करते हैं, तो वो भी जो कंडीशन होती है बहुत ख़राब होती है। और बहुत ज़्यादा दुख होता है और दुख को हम पकड़ कर बैठ जाते हैं कि भाई हमारा दुख ये है, और दुख जो है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है इससे। और दुख इसलिए नहीं बढ़ता कि जीवन कठिन है, बल्कि दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारा जो मन है उसे बार बार दोहराता है। एक घटना खत्म हो जाती है लेकिन मन जो है वो उसे पकड़कर बैठा रहता है। वह सोचता है, समझता है, लेकिन फिर वो उसी दुख में वापस घूमने लग जाता है। तो दुख जो है वो लंबा होता चला जाता है। और जिस दिन ये मन इस दुख को पकड़ना छोड़ देगा, उस दिन ये जो दुख है वो हल्का हो जाएगा। और जब इंसान का दुख हल्का हो जाता है तो उसका जो तनाव है वो भी अपने आप कम हो जाता है। तो सखियों, जीवन में तनाव जो है वो इंसान को काफ़ी प्रभावित करता है। और ये तनाव जो है वो हमें हर कदम पर हमें ये यूं कहूँ कि हर कदम पर हमें तनाव मिलता है। आज घर में ये काम बाकी है, हम तनाव में आ जाते हैं। अरे हमको जॉब में जाना है, देरी हो रही है, ये काम है, कई चीज़ों में हम उलझे रहते हैं, उससे हम तनाव में आ जाते हैं। तो तनाव तो जीवन का एक अंग है। छोटी मोटी बातें उसमें हम तनाव बहुत जल्दी ले लेते हैं, लेकिन इस तनाव को पकड़ कर नहीं बैठना है। क्योंकि जब ये तनाव, ये दुख हमारे दिमाग पर हावी हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा संकट बन जाता है।
0: एकदम आपने सही कहा। और आरती, देखा जाए ना तो तनाव जैसी कोई चीज ही नहीं है, लेकिन हमने इसे एक ऐसा, मतलब तनाव को एक बीमारी का रूप दे दिया है आजकल के युवाओं ने, आजकल के लोगों ने, कि मतलब हर चीज में आप स्ट्रेस लेने लग जाते हो, चीजों को समझना नहीं है और सीधे ही तनाव ले लेना कि अब क्या होगा। अगर हम धीरे से और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ काम करें तो तनाव तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल देखिए तनाव स्ट्रेस लोगों को बहुत होने लग गया है। तो अगर आप भी सखियों, आपको भी कि हर छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट हो रही है या आपको घबराहट होती है या आप डर जाती कि काम में कैसे नहीं कर पाऊँ, तो ये एक तरीके से मानसिक तनाव ही होता है। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आपको, आरती, हमारी सखियों को और भी जितने भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे उन सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शारीरिक और मानसिक रूप से अपने स्वास्थ्य को संतुलित बनाना। क्योंकि जब तक हम अपने स्वास्थ्य को मानसिक रूप से, और शारीरिक का मतलब है कि आपको दैनिक जीवन में रोज योग करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, गहरी सांस लेने के जो मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, उसके अभ्यास करने चाहिए। साथ ही साथ संतुलित आहार, जो खान पान होता है वो भी बहुत ज़्यादा आजकल खराब हो गया है। चाहे यूथ हो तो देखिए कि लेट नाइट आना, लेट नाइट खाना, दिन भर लैपटॉप के आगे अपना काम करना, खाना भूल जाते हैं या कुछ भी जंक फूड खाने लग जाते हैं,
1: ये तो सभी चीजें हमारे को और हमारे तनाव पर बहुत बड़ा असर डालती
0: है। ये धीरे धीरे ये भी स्ट्रेस का एक कारण हो जाती है, तनाव का। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर समय का सही प्रबंधन करना। लोग क्या है, समय का अर्थ है आजकल सही जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं कि जो काम हो रहा है उसे कर लेंगे, बाद वाला बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगर आप जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हम ये काम 2 घंटे के अंदर करके फिर हमारे थोड़ी देर फ्री रहे, अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे।
1: मतलब शीतल, हमें अपने काम की प्रायोरिटी लेवल देखनी है कि पहले क्या काम जरूरी है उस काम को हमें पहले करना है, और जो काम बाद में जरूरी है उसको बाद में करना है। अगर हम ये कंडीशन अपनी रखते हैं तो हम तनाव में आते ही नहीं है।
0: एकदम सही कहा। और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि अपने खाने पीने, रहने, अपने समय का सबका ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है स्ट्रेस जो रहता है ना, कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें पॉजिटिव जो सकारात्मकता सोच है वो रखनी चाहिए। हर चीज़ में नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसे इस सोच के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि नहीं, आज अगर कुछ हो रहा है तो ये किसी अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। लेकिन लोग आजकल हर गलत चीज़ में कुछ ना कुछ और ज़्यादा कुछ सोचने लग जाते हैं और सोच सोच से उनका जो दिमागी संतुलन है वो खराब हो जाता है।
1: और अगर हम चाहते हैं कि भाई ये तनाव जो है इसको, इसका हम प्रबंधन करें, यानी कि तनाव को हम कंट्रोल करें, तो हमें जैसा कि शीतल ने बताया कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो व्यायाम वगैरह ये सब तो है ही, भोजन की सकारात्मक सोच सब कुछ है, और इसके अलावा जो है अपने परिवार और मित्रों से यदि हम बातचीत करें और अपने जो सोच है उसमें ऐसा होता है ना शीतल, कि जब हम अपने घर परिवार के लोगों से कई तरीके की बातें करते हैं तो हमारी कई समस्याओं का हल भी उसमें होता है। तो अगर आपको किसी चीज को लेकर तनाव है और आप अपने मित्रों से या अपने घर वालों से बात करते हैं तो आपकी जो कुछ समस्याएं हैं तो वो कुछ समस्याएं तो अपने आप ही हल हो जाती हैं। और अगर हम, जैसे कि शीतल ने बताया कि भैया योग वगैरह, अगर ये हम अपनी दिनचर्या रखते हैं तो तनाव जो है उसको लेकर के ज्यादा सोचने का हमें मौका नहीं मिलता, और उसकी वजह से होता ये है कि हम अपने आप ही तनाव से मुक्त रहते हैं। जब इंसान खाली रहता है तो वो कई तरीके की बातें दिमाग में सोचता है, लेकिन जब हम अपनी दिनचर्या रखते हैं, अच्छी दिनचर्या, समय पर सब काम करने की, अपने योगा मेडिटेशन वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ अगर समय समय पर करते रहें तो किसी भी तरीके का जो टेंशन है वो हमारे दिमाग में बनेगा ही नहीं।
0: एकदम सही कहा। और सखियों, सबसे ज्यादा जो ज्यादा जरूरी है वो है आपका मनोवैज्ञानिक आरती, जो मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से जो हमारा दृष्टिकोण होता है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम जितना अंदर से स्ट्रांग होंगे हम चीजों को उतना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ हर काम करेंगे, चाहे अगर हम घर का काम भी पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे ना आरती, तो सखियों आप देखिए कि कुछ ही थोड़े टाइम में आपका काम भी हो जाएगा और आपके पास काफी समय भी हो जाएगा। उसके साथ ही साथ घर के काम तो होते ही रहते हैं, साथ ही अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसको भी आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए, उससे भी स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी काम करने से पहले अपने अंदर एक आत्मविश्वास ज़रूर लाना चाहिए आरती, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के, बिना धैर्य के कामों में सफलता नहीं मिलती। और उसके बाद ही अगर मान लो हम सफलता में असफल हो जाते हैं तो तनाव जो है वो हमारे अंदर आ जाता है।
1: तो अपने तनाव को दीजिए अल्प विराम, क्योंकि अब हम ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते एक प्यारा सा गीत।

डूब के चल पार जाना है, तैर के आ डूब के चल पार जाना है, पार जाना है, पार जाना है।

0: डूब के चल पार जाना है, पार जाना है, पार जाना है।
1: फिल्म अशोका का ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे सुनिधि और साथियों की आवाजों में।
2: अब आरती कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम हमारी साथियों को सुनाते हैं वार्ता, जिसका विषय है महिलाओं के विकास हेतु केंद्र सरकार की योजनाएं, और वार्ताकार है प्रेरणा व्यास।
3: 2014 से 2026 में महिला विकास, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य। भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है, जहां महिलाओं को सम्मान और शक्ति का प्रतीक माना गया है। आधुनिक भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी अर्थात महिलाओं शिक्षित, स्वास्थ्य, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो। वर्ष 2014 के बाद से भारत सरकार ने महिलाओं के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को समाज में समान अवसर प्रदान करना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारणा से जोड़ना रहा है। पिछले लगभग 12 वर्षों में महिला कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं और नीतियों ने सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के विकास का विषय ही नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और देश के विकास से जुड़ा हुआ है। जब महिलाएं शिक्षित होती है तो परिवार की शिक्षा का स्तर बढ़ता है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं तो परिवार की आय और जीवन स्तर में सुधार होता है। महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने से सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की शुरुआत की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाए गए। विद्यालयों, पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों को बेटियों के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया। योजना की प्रमुख उपलब्धियां: बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार, विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि, कई जिलों में लिंगानुपात में सुधार, महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता का विस्तार। यह योजनाओं महिलाओं के सम्मान और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में सुधार: शिक्षा महिला विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है। सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विद्यालयों में शौचालय निर्माण, छात्रवृत्ति योजनाएं, डिजिटल शिक्षा और नई शिक्षा नीति के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा को मजबूत बनाया गया है। नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा में लैंगिक समानता पर विशेष बल दिया। इसमें बालिकाओं के लिए शिक्षा तक समान पहुंच और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। छात्रवृत्ति योजनाएं: सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, ताकि वे उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके।

0: प्रयासों से बालिका शिक्षा में सकारात्मक सुधार देखने को मिला। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। सरकार ने महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई है। स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया गया। महिलाओं ने बचत और ऋण गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान की। स्टार्टअप इंडिया, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इन पहलों ने महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ रोजगार सृजनकर्ता बनने का अवसर भी दिया। महिला स्वास्थ्य के लिए सरकारी योजनाएं, महिलाओं का स्वास्थ्य किसी भी समाज की प्रगति का महत्वपूर्ण संकेतक है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया। इससे लाखों महिलाओं को गंभीर बीमारियों के इलाज में सहायता मिली। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, विशेष परामर्श की व्यवस्था की गई। इन योजनाओं ने महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार, मातृ स्वास्थ्य किसी भी देश की स्वास्थ्य तंत्र की सफलता का प्रमुख संकेतांक होता है। सरकार ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया, प्रसव पूर्व की जांच सुविधाएं बढ़ाई, टीकाकरण कार्यक्रमों को भी मजबूत किया। प्रमुख उपलब्धियां, मातृ मृत्यु दर में कमी हो गई, संस्थागत प्रसव में वृद्धि, नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। इन प्रयासों से लाखों माताओं और बच्चों की जीवन की सुरक्षा निश्चित हुई है। पोषण एवं स्वच्छता अभियान, कुपोषण भारत की एक प्रमुख चुनौती रही है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने पोषण अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को उचित पोषण उपलब्ध कराना था। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के माध्यम से महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य की रक्षा की गई। खुले में शौच की समस्या कम होने से महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिला। महिला सुरक्षा के लिए सरकारी प्रयास, महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से रही है। निर्भया फंड, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वन स्टॉप सेंटर, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक स्थान पर चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करेगी। महिला हेल्पलाइन, 181 हेल्पलाइन सहित विभिन्न आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाएगा। साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन अपराधों और साइबर उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष तंत्र विकसित किए गए। कानूनी सुधार एवं महिला अधिकार, सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानूनी सुधार किए, जैसे 3 तलाक पर प्रतिबंध, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्काल 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया। कार्यस्थल पर सुरक्षा, महिलाओं की यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया गया। बाल विवाह रोकथाम, बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता और कानूनी कार्रवाई को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण महिलाओं का विकास, भारत की अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रमुख कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में महिला भागीदारी, इन पहलों ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार किया। डिजिटल एवं तकनीकी सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया। आज महिलाएं ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स और डिजिटल शिक्षा का लाभ उठा रही है। डिजिटल तकनीक ने महिलाओं को घर बैठे रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान किए हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक भागीदारी, महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भूमिका मजबूत हुई है। राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाती है। उपलब्धियां और चुनौतियां, उपलब्धियां, महिला शिक्षा में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, आर्थिक सशक्तिकरण, सुरक्षा उपायों में सुधार, डिजिटल भागीदारी में वृद्धि। चुनौतियां, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, लैंगिक मतभेद, महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता, साइबर अपराध, पोषण संबंधी चुनौतियां। इन चुनौतियों का समाधान निरंतर प्रयासों और सामाजिक सहयोग से ही संभव है। पिछले लगभग 12 वर्षों से भारत सरकार ने महिला विकास, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री भारत वंदना योजना, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, निर्भया फंड, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी अन्य योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। इन पहलों के परिणाम स्वरूप महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और सुरक्षा में सुधार देखने को मिला है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां मौजूद है, लेकिन सरकार, समाज और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से भारत महिलाओं की अधिक सुरक्षित, सम्मान और सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण ही विकसित भारत की आधारशिला है। महिलाओं के विकास के लिए आज सरकार ने तो अनेक योजना बनाई है, लेकिन जो दूर दराज गाँवों में महिलाएं रहती है उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए समस्त महिलाओं को इन सभी सूचनाओं को एकत्रित करना चाहिए और हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, ताकि महिलाएं आज स्वयं आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि अगर एक महिला पढ़ेगी तो उसकी आने वाली सातों पीढ़ियां विकसित होगी।
1: ये थी प्रेरणा व्यास, जिन्होंने महिलाओं संबंधी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसके हमें बहुत ही अच्छी जानकारी थी। और अब एक बार फिर से ले चलते हैं सखियों को गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं गीत।
2: गुमसुम गुमसुम गुप चुप, गुमसुम गुप चुप, गुमसुम गुमसुम गुप चुप, गुमसुम गुप चुप, हल चल खो गई तेरी, होती है तेरी चुप, हल बल खो गई तेरी।

ने हर पल खो गए तेरे मैं तुझे तू बन प्यारी प्यारी चेहरे ने पल से इशारा तेरी आंखों ने सबसे कोई प्यारा हमसे गोरी ना सुन शर्मा हमसे गम से गोरी ना

0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे चित्रा की आवाज में ये प्यारा सा गीत। आरती, आज नशा मुक्ति दिवस भी है और नशा मुक्ति दिवस में क्या अंतर्गत अगर आज हम बात करें हमारी सखियों से नशे के बारे में, तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो नशे की आदि हो गई है और जो एक भयंकर अभिशाप हो गया हमारे समाज के लिए, और देखा जाए तो ये युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद कर रही है और उनके उज्जवल भविष्य को भी बर्बाद कर रही है। जैसे हमने आरती हमारी सखियों से कार्यक्रम की शुरुआत में तनाव के ऊपर बात की थी, तो तनाव भी जो है आजकल युवा जो है बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, और जब वो स्ट्रेस में आते हैं तो पढ़ाई, कैरियर और भविष्य की चिंताओं से बचने के लिए युवा अक्सर नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही खराब है। इससे न केवल युवा बल्कि उनका पूरा परिवार और अब समाज भी प्रभावित होता है।
1: सही कहा शीतल, युवा जो है ये हमारे देश का भविष्य है, और अगर यही युवा अवस्था में अगर ये गलत आदत नशे की पड़ जाए तो जो पूरा हमारा भविष्य है वो खत्म हो जाता है। इस समय व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है, लेकिन यदि युवा नशे की लत का शिकार हो जाए तो उसका जीवन, परिवार और समाज तीनों प्रभावित होते हैं। इसलिए नशाखोरी को युवा अवस्था का अभिशाप कहा जाता है। और आज के समय में देखो, शराब, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, ई सिगरेट और अन्य मादक पदार्थों का सेवन युवाओं में चिंता का विषय बनता जा रहा है। कई बार मित्रों के दबाव में, तनाव में, जिज्ञासा में, गलत संगति के कारण, फिल्मों की वजह से या फिर सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण भी जो युवा है ये नशे की शुरुआत कर देते हैं और धीरे धीरे ये जो आदत है ये लत में बदल जाती है। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं नशा करना, लेकिन उनके जो मित्र हैं या वो देखते हैं भाई सोशल मीडिया पे लोगों को नशा करते हैं, तो उसकी वजह से वो सोचते हैं कि चलो हम भी ऐसी दिखावे के लिए करते हैं, और एक्टिंग एक्टिंग करते करते कब वो रियल में जीवन में आ जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। तो नशे की जो आदत है इससे बचना बहुत जरूरी है, और खासकर जो युवा पीढ़ी है अगर इससे इनका बचाव नहीं किया जाएगा नशे से, तो हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में।
0: एकदम सही कहा, और नशे से बचाने के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें जागरूक करना चाहिए, युवाओं को जो है नशे के दुष्प्रभावों के बारे में सबसे ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है जो उनके माता पिता है उनको अपने बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहिए, उन्हें हर वक्त डांटना डपटना या उनकी कोई भी असफलता के ऊपर उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, क्योंकि जितना पेरेंट्स जो अपने माँ बच्चों के साथ संवाद रखते हैं, दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, बच्चा उतना ही खुल के बाहर आता है।
1: और नशाखोरी की रोकथाम के लिए परिवार, विद्यालय और समाज सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना, उन्हें खेल, योग, सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों से जोड़ना और सही मित्रों का चयन करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान और पुनर्वास केंद्र में भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। और अगर कोई बच्चा या कोई युवा जो है वो नशे की आदत उसमें

0: पड़ गई है और वो छूट नहीं रही, तो सरकार के द्वारा जो नशा मुक्ति केंद्र हैं आप उन पर उन्हें ले जा सकते हैं, और अगर उन्हें दवाइयाँ दिलाई जाए तो बिना बताए उनकी जो नशे की आदत है वो छुड़ाई जा सकती है। तो सखियों, आपके भी आसपास कोई इस तरीके की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं परिवार, उनके घर के जो युवा है वो नशे में यदि फंसे हुए हैं, तो आप भी उनको इस बारे में बता सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और हम चलते हैं शीतल एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में,
1: हमारी सखियों को सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हमें रही प्यार के का ये प्यारा सा गीत। आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सखियों, स्वच्छता की जो आदत होती है इंसान में, वो सबसे बड़ी आदत होती है। क्योंकि अगर हम अपने आसपास, अपने घर में, अपने किचन में, हर जगह अगर सफाई नहीं रखें तो किसी भी चीज़ में काम में मन नहीं लगता। और स्वच्छता केवल सफाई का नाम नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ, सुरक्षित और सभ्य जीवन की पहचान भी है। जिस समाज में स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ कम होती है और लोगों का जीवन अधिक सुखद होता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वच्छता हमारा गौरव है। और स्वच्छ वातावरण हमें अनेक तरीके के जो रोग हैं इनसे बचाता है। अगर हमारा घर साफ है तो हमें वहाँ रहना, कुछ काम करना, अगर वहाँ पर मेहमान आए तो उनका स्वागत करना, सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हमारा घर बिखरा हुआ है, घर साफ सुथरा नहीं है, तो अगर हमारे घर पर कोई आएगा तो हमें टेंशन हो जाएगी कि भाई घर पर कोई आ रहा है और हमारा घर गंदा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह हम पढ़ते हैं, जिस जगह हम काम करते हैं, उसका जो वातावरण है उसमें साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। और जहाँ साफ सफाई होती है वहीं कहते हैं कि भगवान का भी वास होता है।
0: एकदम आपने सही कहा। और जैसा कि हाँ, हमारा जो विषय है कि स्वच्छता ही हमारा गौरव, इसका अर्थ यही है आरती, कि साफ सफाई को केवल एक काम ना मानकर हमें जीवन का एक उच्च आदर्श और सम्मान का प्रतीक मानना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने और अपने मन को स्वच्छ रखते हैं तो इससे न केवल हमारा स्वास्थ्य बल्कि आरती जो पर्यावरण होता है वो भी बेहतर होता है, जो हमारे समाज के लिए भी हमारा गौरव बढ़ाता है। और स्वच्छता को अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या या जीवन शैली का जब हिस्सा बना लेते हैं तो उससे देखिए कि एक अलग ही तरीके की पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। इसके लिए हमें करना कुछ नहीं होगा। देखिए, घर को तो हर कोई साफ करता है, आरती अपने घर को साफ करने के साथ साथ अगर हम अपने आसपास के जो घर के बाहर के क्षेत्र है उसमें भी अपना योगदान दें और धीरे धीरे हम हर चीज़ में बाहर सफाई की जो योगदान होता है हर क्षेत्र में दें, तो उससे आप देखिए आसपास का वातावरण भी आरती बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से एक व्यक्ति ने अगर शुरुआत की तो धीरे धीरे अपने आप काफ़ी हाथ उसके साथ खड़े हो जाएंगे सफाई अभियान में।
4: और कई लोगों की आदत ऐसी होती है शीतल की, लोग अपना घर साफ सुथरा करते हैं और जो कचरा है वो अपने ही घर के बाहर फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो कचरा है इस पर जो मक्खियाँ बैठेगी या मच्छर बैठेंगे, वो अपने पैरों से जो गंदगी है वो हमारे घर के अंदर लेके आएंगे और हमारे घर में जो कुछ खुला सामान रहेगा उस पर ये गंदगी जो है वो गिराएंगे और इससे कई तरीके की बीमारियाँ होंगी। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि भाई हम बीमारी से बचे रहे तो न सिर्फ हमें अपना घर साफ रखना है बल्कि जो घर के बाहर का क्षेत्र है उसको भी साफ रखना है। अपने घर की गंदगी को हमें सिर्फ बाहर फेंक देने से घर की सफाई नहीं होती। और देखिए शीतल, सिर्फ घर की सफाई से नहीं बल्कि अपना देश, अपना समाज, सबकी प्रतिष्ठा तब बढ़ती है जब हमारा पूरा देश जो है वो साफ सुथरा दिखे। आज जब हम बाहर जाते हैं हमारे देश से बाहर, तो हम देखते हैं कि वहाँ कितनी साफ सफाई दिखाई देती है। तो इसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं होती या खाली एक समाज जिम्मेदार नहीं होता, इसके लिए पूरा देश जो है वो जिम्मेदार होता है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का नाम सब जगह फैले, हमारे यहाँ पे जो पर्यटक आए उन्हें हमारा जो देश है वो अच्छा लगे, साफ सुथरा लगे, तो इसलिए इसकी जो शुरुआत है वो हमें अपने घर के साथ साथ, तो मतलब घर की तो सफाई करनी ही है लेकिन जो अपने आसपास का जो भी हिस्सा है उसको भी करना है और जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनको रोकना भी है, तभी ये जो साफ सफाई का जो माहौल है, जो स्वच्छता है वो हमारे आसपास दिखाई देगी।
0: एकदम सही कहा। और आपने एकदम सही कहा कि घर की साफ सफाई तो आरती हर कोई करता है, लेकिन सखियों बाहर की जो सफाई है वो भी हमें उसमें भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए आरती, गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्वस्थ और एक स्वच्छ समाज ही सही मायने में प्रगति कर सकता है। और इस गौरव को बनाए रखने के लिए आज हम भी एक संकल्प लें कि ना हम गंदगी करेंगे और ना गंदगी करने देंगे।
4: और देखिए सरकार ने भी कितने अभियान चलाए हैं, रोज स्वच्छता सफाई के लिए कचरा डालने के लिए गाड़ी आती है, स्वच्छता अभियान है, गली गली में सफाई की जाती है, लेकिन फिर भी हम लोगों की जो आदत है वो बहुत गंदी हो गई है कि अगर हम अपने घर का कचरा उस गाड़ी में नहीं डाल पाते तो हम वो कचरा अपने ही घर के बाहर फेंक देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने घर की सफाई के लिए हम नालियों में वो कचरा डाल देते हैं, और जब नालियों में ये कचरा जाता है तो नालियों को ब्लॉक करता है, आगे जाकर वो और भी ज्यादा नालियां जो है वो रुकती है और वो गंदगी जो है वो वापस सड़क पर आ जाती है। तो अगर किसी दिन आपके साथ ऐसा हो जाए कि भाई कचरे की गाड़ी निकल गई है, आप कचरा नहीं डाल पाए, तो आप उसे अपने घर के बाहर या नालियों में नहीं डालें, बल्कि एक पॉलिथीन में भरें और उसको जाकर डस्टबिन जो जहां कहीं सार्वजनिक डस्टबिन लगे हुए हैं वहां पर हमें डालना चाहिए। और देखिए इसके वहां पर भी डस्टबिन भी दो तरीके के होते हैं, सूखा और गीला कचरा डालने के। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सूखा कचरा हम अलग डालें और गीला कचरा जो है वो हम अलग डालें। तो इस तरीके की जब साफ सफाई की आदत हम रखेंगे तो अपने आप ही हमारा देश जो है वो साफ सुथरा हो जाएगा।
0: एकदम सही कहा। और साफ सफाई की स्वच्छता की बातें तो आरती हमने हमारी सखियों से बहुत कर ली, लेकिन अब हमारी सखियों का हम मनोरंजन भी कराते हैं और उन्हें सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया था कुमार शानू और अनुराधा पोडवाल ने।
1: शीतल, मुझे तो गीत सुनना बहुत पसंद है और गीत सुनने के साथ साथ मुझे कुछ लिखना भी, जैसे कुछ आर्ट से संबंधित कुछ लिखें, ये सभी बहुत अच्छा लगता है। तो हर इंसान की कुछ ना कुछ हॉबी होती है और अपनी जो हॉबी है इसे हमें ज़रूर विकसित करना चाहिए, क्योंकि जब हॉबी विकसित होती है तो हमारे मन की जो बात है वो हम अपनी हॉबी में निकाल सकते हैं। और उससे क्या होता है कि आज हमने देखिए तनाव की बात की, तो उस तनाव से भी मुक्त होते हैं। और अगर हम भाई अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं तो उससे एक अच्छा माहौल भी क्रिएट होता है। और कई तरीके के भाई हमारे में कला जो है हमारी निखरती है, कई तरीके में ये चीज़ें जो है वो हमारे काम आती हैं। तो जो भी इंसान की हॉबी है, किसी को कलर करना पसंद है, किसी को ड्राइंग करना है, किसी को स्केच बनाना है, किसी को गाना गाना है, किसी को गाना सुनना है, और भी बहुत तरीके की हॉबीज होती हैं लोगों की, तो हमें इस हॉबी को ज़रूर विकसित करना चाहिए ताकि हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: एकदम सही कहा। और सखियों, कई बार हम इस विचार में रहते हैं, कश्मकश में आरती रह जाती है सखियाँ, कईयों को यही समझ नहीं आता कि हमारी आखिर हॉबी क्या है, हमारा शौक क्या है। तो इस शौक को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अपने खाली समय में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिन कामों को करने में आप समय भूल जाते हैं या आपको करने में बहुत मज़ा आता है, आप उन कामों को कीजिए, वही आपकी हॉबी होती है। नहीं तो आप बचपन के शौक याद कीजिए, शौक जो होते हैं ना, कि जैसे कई बार होता है हमें बचपन में लिखना बहुत पसंद था, या हमें ड्राइंग पसंद थी, या हमें स्केच बनाना पसंद था, लेकिन धीरे धीरे समय बड़ा होता, हम बड़े होते गए, समय के साथ जिम्मेदारियों के साथ हमारी चीज़ों को भूल गए, हमारे शौक को। तो यही होता है कि जब हम वापस से उसे पुनर्जीवित करते हैं, अपने शौक को वापस से कुछ नया करने की, सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, इससे जो जैसा कि आरती आपने बताया कि तनाव

0: लंबा बैठे रहते हैं, और बैठे रहने की वजह से क्या होता है मालूम है, अपच हो जाती है। क्योंकि खाना खा के जब आप एक ही जगह बैठे हैं काफी लंबे समय से, तो आपको अपच की समस्या होती है। तो अगर आपको अपच की समस्या है, तो हमारी जो दादी नानी के नुस्खे हैं, हमारी रसोई में ही जो मौजूद है, वो हमारी हेल्प करते हैं इस अपच की समस्या से मुक्ति दिलाने में। जैसे कि आप काला नमक, अजवाइन और हींग, इसका एक मिक्सचर बना के रख लीजिए, जिसमें आप काला नमक थोड़ा कम, अजवाइन ज्यादा और हींग उससे भी कम डालिए। और जब कभी आपको इस तरीके की दिक्कत हो, तो आप गुनगुने पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ जब ये लेंगे, तो आपकी अपच की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी।
1: ठीक है, और जाते जाते दादी नानी के नुस्खों में एक और बता देते हैं कि हल्दी का जो दूध होता है वो बहुत ही इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो सखियों, रात के समय अपने जीवन रूटीन में, डेली रूटीन में हल्दी का दूध भी आप पीना चालू कर दीजिए। अब आरती, बातें तो बहुत हो गई, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम अपनी बातों को आगे भी जारी रख सके। तो सखियों, अपनी रेडियो सखी शीतल
0: और आरती को दीजिए
1: इजाजत। अगले कार्यक्रम में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: 15-year-old batting prodigy Vaibhav Suryavanshi. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।

0: और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
4: For our business,
5: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि

0: निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार हैं।
0: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर SJ ने आज ऑपरेशन अमिस्टार्ट की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: बहुत याद आई।
1: परसमणि फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। भोपाली की बोल थी।

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का, ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

0: औताद मेरे जीते हुए दिन।
1: किशोर कुमार की आवाज में दूर दर्दन की छाव में फिल्म का गाना था।

रहे मिट के मिटने वाले, पर जब गमों से पाले रहे मिट के मिटने

0: दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा कभी जगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हर दम।
1: दो बदन फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में था। शकील बदायूनी की बोल थी संगीत रवि का।

बुरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियर में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में

रख पतवा सर के डोले मनवा की यार में उठ तहिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की यार में उठ तहिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज

ये झुक्के बोलने कारे कारे ये बदरवा झुक्की झुक्की बोले कारे कारे ये बदरवा कब से पुकारे तो है नैनो का कजरवा घुमर घुमर जब कर जे पदरिया रे कुम कुटुक नचे मो झोंकवा में आयो रे संदेश वाकी चल आज

0: போலே லம்பிய டகரியா திமிட்டு திமிட்டு போலே லம்பிய டகரியா ஜல்தி ஜல்தி சல் ரஹி அப்னி நகரியா ரஹியா தக்கத்து பிரு இன்னியா துலன்னியா ரே பாந்து கெல்ல கண்ணியா கிடோ के झोंकुआ में आयो रे संदे सुवा की चल आज दे सुवा की ओ
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था, जानकी बोल थी, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ आवाज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने

0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
1: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी
0: हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों की दिल की जुबान। हेलो सहेली।
2: आहा!

0: तकिया नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाते गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहेली, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है? हाँ, शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती है, काम करती रहती है। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के क्या हाल चाल है?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान है, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं, किस

0: तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे।
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप धूप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर
1: हाँ,
0: निकलते वक्त छाता
1: पानी
0: लेके
1: पी
0: चल।
1: लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है वो लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम, नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है। हाँ
0: निशा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी जी
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में
1: जी।
0: हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब

0: 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
1: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: हाँ जी हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और 3-4 आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ, तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही है, उसके आगे नहीं बढ़ी।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार के साथ खुशहाल हैं।
0: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाते हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? पूनम
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: यादव, लुधियाना से। पूनम
1: जी मैम।
0: जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो बस हाउस वाइफ हूँ मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का ख्याल
1: हाँ
0: रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।

0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई
1: हाँ
0: करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में। और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना। और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी
0: की क्या हालचाल है।
1: बहुत बढ़िया जो आपसे बारिश होके आती है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। सारे
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी, जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं।
1: एक प्रताप फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते, कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो?
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं, एक अपने खुद

0: के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने
1: मुझे
0: में।
1: मुझे गाने में आनंद मिलता है। रेडियो सुनती हूँ,
0: गाती
1: विविध
0: भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ, बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी,
0: जी, और गाती भी हैं आप
1: जी दीदी गाती हूँ, अच्छा
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना की भी सुनाओ।
0: सुनाइए।
1: देवी जी के मंदिर में लटके बहारी आई, देवी जी के मंदिर में लटके

0: मांगी आई देवी जी की मंदिर में लट से बांगी आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: कोई भी सुना दीजिए
1: जी। ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने

0: बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग पेंटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ, पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका कवयित्री गायिका भी हूँ और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है, मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी।
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार है, आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी, मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ है, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई है कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई है और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया, अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केटिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी, और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें, भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम एक दो घंटा अपने लिए खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं, और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी।
0: ये बहुत सही बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सही जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी है, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और
1: धन्यवाद।
0: यही गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।
2: घर आ जा, घिर आए बदरा।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: जी? मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प और हेमल कसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात।

0: हाँ
1: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये हमने
0: जी
1: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
0: जी
1: आप क्या काम करती है वहां पर?
0: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है। हाँ,
1: तो वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
0: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैं प्रकाश बाबा उनकी ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला, और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
1: तो कैसा लग रहा
0: और
1: है
0: ये
1: आपको वहां जाकर?
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है, और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
0: जी
1: जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का काम
0: जी
1: करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
0: जी
1: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
0: हाँ, मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए, रेडियो कब सुनती हैं आप?
0: रेडियो में ऐसे मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ, और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
1: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: हमको मन की शक्ति देना, ये प्रार्थना गीत बहुत पसंद है, और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
1: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के
0: या
1: हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को
0: हाँ
1: हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं
0: हाँ
1: आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है, और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ, जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है, और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ, जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: जो
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है, और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी, जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, अच्छा हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना गुनगुना
1: जी
0: के बताइए आप।
1: जी जी

0: रुबा तबारी, दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हरियाणा हिसार से। हाँ
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है।
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई
1: हाँ
0: करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखे जो खत तुझे वो फूल बन गए।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

नजारे बन गई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

जमाना लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजर बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

सुन्नत ये दामन में लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग दे नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लेगी, पर अब तो निश्चिंत की जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है। बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी ही खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन
0: बचपन।
1: से, जब से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोर अवस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी। मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात
1: हाँ,
0: आपने कही।
1: प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला को ऐसे ही करना चाहिए कि कितने भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है। अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है, अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। और जब हम योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना, तो हमारा देखा सीखे बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये
1: में। जी
0: गीत।

तुम बदलों के उल्टी चालें बिगड़े हुए जमाने की, तुम लाओगे बहार वापस

0: बनाने की,
1: बिगड़ी बात बनाने की,
0: प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोक जो

0: दुनिया को।
1: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार है 400-24662, फिर से 400-24662, दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 28670288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था, रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

पिछले मत बहारों से कि जिंदगी के सुबह शाम कैसे जीते हैं, कि जिंदगी के सुबह शाम कैसे जी

की हर हारी हुई बाजी हम जीते हैं, हर हारी हुई बाजी हम जीते हैं। ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं। ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा

से बेबस हम चुप हो जाते हैं, मत रूठ हमारी बातों से न कहेंगे।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी। उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था, दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। ये उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते।

शबाब शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर। ये

यहाँ की सब रवायतें अदब के शाहकार है, अमीर अहले दिल यहाँ गरीब जानिसार है, हर एक शाख पर यहाँ

0: ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी।
1: जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।
2: मधुबन में जो कन्हैया किसी को पी

मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था, उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुई।
1: बाजू।

0: एक बात यही है,
1: क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है,
1: क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है।

0: ठीक है, सच्ची झूठी सही धंधा ये ठीक है।
1: आड़ी तिरछी चला चला आके झूम, आड़ी तिरछी चला चला आके झूम,
2: आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम बाजू।

0: इतनी सी बात न समझा जमाना,
1: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।
0: इतनी सी बात न समझा जमाना,
1: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।
0: शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है।

0: तल्ले का नाम
1: आड़ी तिरती चला चला के झूम आड़ी तिरती चलाई चलाया के झूम
0: आड़ी चला चला के झूम तिरती चला चला के झूम बाजू
1: बाबू दम जो इशारे और पुकारे पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी ऐसे है प्यारे पम पम पम

0: मिल मिल के चलना यूं ही साथी
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाद की
0: मिल मिल के चलना यूं ही साथी
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाद की
0: मुश्किल जो आ पड़े होकर से डाल दे
1: पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के डाल दे
0: मुश्किल जो आ पड़े होकर से डाल दे पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के डाल दे
1: जो समझ आए उसी की मची धूम जो समझ आए उसी की मची धूम
2: जो समझा उसी की मत धूम जो समझा उसी की मत धूम
1: बाजू
0: ए बाबू समझो इशारे।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदायी भी होता है, जैसे तैसे रातें कटती हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली थी, इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलोनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन किसी की हाया।

के चले ख्वाब मेरे हो गए रंगी। गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन किसी की हाय याद हो।

गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन किसी की हाय यादों

0: उधर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन उधर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन उधर जाए दिन।
1: तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था, उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे, रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड, किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता, यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए कुछ सूझ नहीं रहा था, ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे, इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूं कि सौ राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

हजारों रंग के नजारे बन गई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

राय, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग दे, नजारे पर गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजर बन गए, जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग दे नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया ये सोचकर कि यह तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थी कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

सबसे पहले सुनो मियां, करके वर्जिश बनो जवां। सबसे पहले सुनो मियां, करके वर्जिश बनो जवां। चेहरा मालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो। स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ किपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे।

सीखो कर तब नए नए फैशन पे ढब नए नए सीखो कर तब नए नए फैशन के ढब नए नए ढीला ढाला लिबास क्यों रेशम पहनो कपास क्यों फन ये जादूगरी का है अरमां तुमको परी का है तो टिपला मारो मन कर ठेठी बनकर निकलो वक्त याम बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो।

तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल। मुत्तस से दिल उदास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा मेरे लब का जाम बड़ मिया दीवाने। ऐसे न बनो

इस तन्हाई में ऐ हसी, इतनी दूरी भली नहीं। आया मौसम बहार का, रख ले दिल बेकरार का। मेरे हाथों तुम तुम मैं हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमा, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है। तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो, पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहे, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहे।

0: पहली मुलाकात
1: पिछले जन्म में शायद मैंने प्यार किया था तुझसे, पिछले जन्म में शायद मैंने प्यार किया था।

0: नहीं प्यार जताया करते,
1: जब हाथ दिया हो हाथ में नहीं हाथ छोड़।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे, आगे बढ़ गए। कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी कुछ नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हम

कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर। हाँ।

0: अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा।
1: ऐसी बात नहीं ना।

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

मुंबई के कार्यक्रम आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी।

युवा साथी सुन रहे हैं युवा। मैं अर्चना आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में करियर, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, संयुक्त परिवार का महत्व, पीएम जन औषधि केंद्र और खेल खेल में सीखे। तो श्रोताओं, हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में करियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना आज के समय में सबसे सुरक्षित, सम्मानजनक और तेजी से बढ़ने वाले विकल्पों में से एक है। तो इस क्षेत्र में केवल डॉक्टर बनना ही एकमात्र विकल्प नहीं है, बल्कि आप अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कई अन्य जो बेहतरीन पद हैं उस पर भी अपना भविष्य बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जो हमारे सामने जो प्रमुख विकल्प है इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले बात करते हैं कोर मेडिकल करियर की, यानी कि मुख्य डॉक्टर की। तो यदि आप सीधे मरीजों का इलाज करना चाहते हैं तो लंबी पढ़ाई के लिए तैयार हैं, तो ये विकल्प आपके लिए है। जैसे एलोपैथिक डॉक्टर, यानी कि MBBS, तो आपको 12वीं के बाद नीट परीक्षा पास करके 5.5 साल का जो कोर्स है वो करना होता है। इसके बाद आप विशेषज्ञता, यानी कि MD MS जैसी जो न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जन है वो बन सकते हैं। आपके सामने और विकल्प है BDS का, यानी कि दंत चिकित्सक, दांतों और मसूड़ों के इलाज के लिए विशेषज्ञ, और आयुष डॉक्टर, यानी कि BMS और BHMS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से इलाज करने वाले डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। साथ ही साथ पशु चिकित्सक, तो जानवरों के स्वास्थ्य और उनके इलाज से जुड़े जो डॉक्टर हैं वो पशु पशु चिकित्सक कहलाते हैं। तो आप इस फील्ड में जाकर भी है वो अपना जो भविष्य है वो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग और अलाइड जो हेल्थ केयर है, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो सिर्फ अस्पताल प्रबंधन और मरीजों की 24 घंटे देखभाल से जुड़ा हुआ है। जैसे नर्सिंग है, नर्सिंग के लिए आपको जो मरीजों की सीधे देख रेख करना, दवाइयाँ देना, डॉक्टर की मदद करना, ये सारी है वो आपकी नर्सिंग में आता है। फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि BPT, शारीरिक चोट दर्द या विकलांगता से उबरने के लिए एक्सरसाइज थेरेपी देना, ये सारे है फिजियोथेरेपिस्ट में आता है। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट है उस फील्ड में भी जा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल जो थेरेपिस्ट है, यानी कि BOT, मरीजों को उनके रोजमर्रा के काम दोबारा सीखने में मदद करना, और इसके साथ फार्मेसी और डायग्नोस्टिक जैसे बिना नीट वाले कोर्स, यदि आप बिना नीट परीक्षा दिए चिकित्सा क्षेत्र में आना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी कि फार्मासिस्ट, दवाइयों के निर्माण, रिसर्च, उसके वितरण से जुड़ा हुआ काम होता है। मेडिकल लैब जो टेक्नीशियन है, खून, यूरिन, सभी प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट है वो उनका जो कह सकते हैं कि लैब आप है, लैब के जरिए है वो अपना काम कर सकते हैं। और इसके साथ रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी है वो जो फील्ड है उस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो भी आप कर सकते हैं, कि अस्पताल के दैनिक कामकाज, बजट, स्टाफ का प्रबंधन करना, मरीजों के स्वास्थ्य, बीमारियों के अनुसार उनके डाइट प्लान को तैयार करना, ये पोषण विशेषज्ञ यानी कि डाइटिशियन के अंतर्गत आता है। चिकित्सा शोधकर्ता यानी मेडिकल रिसर्चर, ये भी आप कर सकते हैं। नई दवाइयों, टीकों की खोज के लिए प्रयोगशालाओं में शोध करना। तो इस प्रकार से श्रोताओं, ये जो ये चिकित्सा का जो क्षेत्र है इसमें बहुत जो विकल्प आज के युवाओं के सामने है। तो ये सिर्फ आपको डॉक्टर बनने तक सीमित नहीं रखता, और भी आपके सामने बहुत से ऑप्शन है जो अभी हमने आपके साथ शेयर किए। इन ऑप्शन को अपनाकर आप अपना जो करियर है वो चिकित्सा के क्षेत्र में है वो बना सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में है वो हर जो व्यक्ति है जैसे

आज का जो युवा है, अगर वो चाहता है कि वो इस क्षेत्र में सिर्फ डॉक्टर ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर बने, उनके सामने और विकल्प हमने है वो रखे हैं। तो इस प्रकार से आप है वो इन जो इस क्षेत्र को, यानी कि चिकित्सा का जो क्षेत्र है, उसमें अपने भविष्य को बनाकर उज्जवल कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो कि हर साल 26 जून यानी कि आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। तो इस विशेष दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को नशीले पदार्थों के हानिकारक जो प्रभाव है उनके प्रति जागरूक करना है और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। तो इस दिन की इतिहास की बात करते हैं तो इसकी जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7 दिसंबर 1987 को एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। और आधिकारिक तौर पर बात करते हैं तो पहला अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून 1989 को मनाया गया था। यह दिन है वो, अगर हम देखते हैं कि नशा जो निरोधक दिवस है क्यों मनाया जाता है, तो इसका सीधा सा यही है कि जो देश है, समाज है, उसको नशा मुक्त करना। और हर साल इसकी एक थीम होती है। तो 2026 के लिए इस दिवस की जो आधिकारिक थीम है वो है वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, यानी कि यह थीम इस बात पर जोर देती है कि पुरानी समस्याओं के साथ साथ अब सिंथेटिक ड्रग्स, सोशल मीडिया के जरिए होने वाली तस्करी जैसी नई जो चुनौती आ रही है, जिनका सामना हमें नए और इनोवेटिव तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारे सामने सिर्फ ये नशा ही नहीं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें अब इस समय में आ गई है जिसके लिए युवाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ये नए जो चैलेंज है, इनोवेटिव जो रेस्पॉन्सेज हैं, इनके जो तरीके से हमको है इस जो नशा की जो, या कह सकते हैं कि नशे की जो लत है, वो युवाओं से उनको है वो नशे से छुड़ाना है। तो इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो जागरूकता है सबसे पहले, यानी कि जो युवा है, समाज है, उनको नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले जो शारीरिक और मानसिक नुकसान है उसके बारे में शिक्षित करना। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग को नहीं पता होता है कि किस वे में जाने या किस क्षेत्र में जाने से उनका जो कोई लाइफ है वो बर्बाद हो सकती है। क्योंकि आजकल युवा है वो देखा देखी में या ऐसी संगति में आकर है वो इस जो बुरी लत, यानी कि जो नशीली दवाएं हैं उनका सेवन करना, इस प्रकार से वो कर रहे हैं। तो इससे जो युवाओं का खुद का जो एक कह सकते हैं कि जीवन तो बर्बाद हो रहा है, उसके साथ साथ उनके जो परिवार है, उनके रिश्तेदार है, माता पिता है, उनका भी जीवन है वो उनसे जुड़ा हुआ था। तो वो सब भी है वो कह सकते हैं कि पूरा भविष्य है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए युवाओं को और समाज को इन नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले जो शारीरिक, मानसिक और भी हम कह सकते हैं कि नुकसान जो होते हैं उनके बारे में शिक्षित करना ही इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अवैध रूप से होने वाले जो ड्रग्स की व्यापार है और इंटरनेशनल जो स्मगलिंग है, उसके नेटवर्क है, उसको तोड़ना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ये जो अवैध रूप से जो काम होते हैं उन्हीं के द्वारा है जो लोग इन युवाओं पर, यानी कि जो ये युवा है आज के, इन युवाओं को ही टारगेट स्पेशली किया जाता है, इनके जीवन को है वो बर्बाद किया जाता है। तो जब वो खुद जागरूक होंगे, उनके अंदर ये समझ होगी कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, तो वो इस रास्ते में जाएंगे नहीं। और नशे की लत से जो जूझ रहे लोग हैं उनके साथ भेदभाव ना करके उन्हें इलाज और सही काउंसलिंग प्रदान करना भी इस है वो दिन का उद्देश्य है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो जिनको नशे की लत हो जाती है, उनसे जो परिवार है या माता पिता है या जो भी रिश्तेदार होते हैं, समाज होता है, वो इनको तिरस्कृत करता है उनको। और तिरस्कृत जो करता है वो तिरस्कार उनको उनकी इन्हीं आदतों के कारण मिलता है। लेकिन अगर उनको जो सही समय पर अगर सहानुभूति मिले, पुनर्वास मिले, तो हो सकता है कि वो नशे की जो लत से जो जूझ रहे लोग हैं उनको एक कह सकते हैं कि उनको एक केयर मिले जिससे कि वो है वो नशे की लत से बाहर आकर अपना जो सामान्य जीवन है वो समाज में रहकर है वो कह सकते हैं कि जी सके। तो इसके लिए
जरूरी है कि

को भी आगे आना, क्योंकि कई बार जो पुलिस है या प्रशासन है उसके द्वारा कई ऐसे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उसके साथ अगर समाज है वो भी आगे आए, वो भी एक ऐसी जिम्मेदारी ले कि हमारे जो युवा है वो ही क्यों इस प्रकार से पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, या वो ऐसी कुसंगत में क्यों जा रहे हैं, उनको इन लत से कैसे बाहर निकालना है। तो ये सारी जो जागरूकता जो बढ़ाने के लिए ही इस दिवस को है वो मनाया जाता है, और सही जो काउंसलिंग है वो उनको प्रदान की जाए जो इस प्रकार की आदत में है। और विभिन्न जो देश है उनकी सरकार और कानून व्यवस्था के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना भी इस दिन का उद्देश्य है। तो हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में भी जो नशा मुक्त भारत अभियान है वो चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत स्कूल है, कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो जागरूकता कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं, जिससे जो लोग है वो प्रभावित हो और जागरूक हो, ताकि वो अपना जो कह सकते हैं जीवन है वो साधारण तरीके से सम्मानपूर्वक जी सके। क्योंकि नशे के जो कई प्रकार है वो आज हमारे सामने आ चुके हैं और उसके दुष्प्रभाव है वो भी है, वो हम सब जानते हैं। जैसे जो शारीरिक नुकसान में हम देखते हैं तो लीवर खराब होना, दिल की बीमारियां होना, कैंसर होना, कमजोर इम्यून सिस्टम होना, ये इसके शारीरिक नुकसान है। और मानसिक नुकसान में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मति भ्रम होना, यानी कि एक याददाश्त भी यहाँ तक कि कमजोर हो जाती है। और पारिवारिक प्रभाव की तो अभी हमने बात की थी, घरेलू कलह होना, आर्थिक तंगी आना, बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ना। तो इस प्रकार से नशा है वो किसी भी तरीके से भला नहीं है, यानी कि वो सिर्फ आपको शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर नहीं, आपको हर तौर पर है वो एक तोड़ देता है। वो सिर्फ आपको नहीं, यानी कि सिर्फ नशा करने वाले को नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए जो भी उनके परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, माता पिता होते हैं, जो भी जुड़े हुए लोग होते हैं, उन सबके जीवन पर एक नेगेटिव जो नकारात्मक प्रभाव है वो पड़ता है। तो इसलिए मेरी युवाओं से यही अपील है कि हमें नशे को ना कहना चाहिए और अपनी जिंदगी को हाँ कहना चाहिए, क्योंकि नशा और जिंदगी दोनों साथ में नहीं चल सकते। आपको विकल्प के तौर पर अपनी जिंदगी को ही चुनना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी जिंदगी को है वो एक साधारण तरीके से है वो सकारात्मक तरीके से जी सके। तो इसके लिए अगर कोई ऐसा है वो हमारे आसपास अगर है ऐसा कोई व्यक्ति जो इस लत से है वो कह सकते हैं कि प्रभावित हो गया है, तो हमें उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए और उसके उन्हें है वो डॉक्टर की देखरेख में सुरक्षित तरीके से है वो नशा छुड़वाने, यानी कि जो पुनर्वास जो केंद्र होते हैं वहां पर उनको ले जाना चाहिए। परिवार के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी कि परिवार जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो उसके जो परिवार के जो लोग होते हैं उनकी उसमें कोई गलती नहीं होती है, तो हमें उनके साथ यानी कि जो परिवार होता है उनके साथ किसी प्रकार का है वो भेदभाव ना करके उनको भावनात्मक रूप से है वो संभालना चाहिए। क्योंकि कई बार है वो बच्चों की गलती से माता पिता को या उनके परिवार को है वो काफ़ी चीज़ें जो मानसिक प्रताड़ना है वो समाज में झेलनी पड़ती है उनको। एक कह सकते हैं कि कई बार तो उनसे लोग बात भी नहीं करना चाहते, जैसे वो खुद नशा कर रहे हैं। तो ये सारी जो मानसिकताएं हैं इन मानसिकताओं से ऊपर उठकर हमें है वो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को छोटी सी भी जिंदगी देते हैं, यानी कि एक प्रकार से नया जीवन देना ही है, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको नया जीवन देना एक तरीके से किसी की जान को बचाना है। तो अगर हम ऐसे कार्य में है वो अगर लगते हैं, अगर हम ऐसी किसी की छोटी मदद करते हैं, तो ये जो दिन है यानी कि जो नशा निरोधक एक अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है वो एक सार्थक हो जाता है। तो जब ये दिन आधिकारिक तौर पर जो मनाया जा रहा है वो इसी कारण मनाया जा रहा है कि हर जो व्यक्ति है वो जागरूक हो, अपने आसपास ऐसी अगर स्थिति है किसी के साथ उनकी मदद हो, अगर उनके साथ खुद ऐसा हो रहा है तो वो खुद अपनी मदद करे, समझे कि क्या इसके नकारात्मक प्रभाव है। तो ये सारी जो बातें हैं वो जो जागरूकता कह सकते हैं कि एक तरीके से जागरूकता है वो इस दिवस के द्वारा है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, ताकि लोग हैं वो ऐसी जो समस्या है उससे उभरे, आगे बढ़े। क्योंकि ये जो आज का जो समय है, यानी कि कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है और
इतना

आज के समय आ गया है कि बच्चों को, युवाओं को संभालना बहुत ही कठिन हो गया है और बहुत जरूरी हो गया है। तो इस कठिनता भरे समय में युवाओं को, अपने बच्चों को संभालना, ये अभिभावक यानी कि सबकी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ बच्चों की भी ये जिम्मेदारी है कि उनके अंदर ये समझ हो कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एक छोटी सी, जो एक लापरवाही कह सकते हैं, छोटी सी गलती है, वो गलती कब बड़ा रूप ले, कब उनकी जिंदगी पूरी खराब हो जाए, उनको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मेरी आप सभी से, या कह सकते हैं कि जो भी हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो उन सबसे मेरी यही मेरा ये निवेदन है कि हमें ऐसी जो कह सकते हैं कि एक ये जो नशा है उससे हमें दूर रहना चाहिए। और ये कुसंगत कह सकती हूँ मैं इसको, मेरे पास अभी शब्द नहीं आ रहा था, एक कुसंगत है, ये बुरी संगत है। तो हमें ऐसी बुरी संगत में नहीं पड़ना है, और ना ही हमें अपने आसपास ऐसा दिखाई दे रहा है तो हमें उनको रोकना है, ये ही जागरूकता है। तो ये जागरूकता हम सबके अंदर जब आ जाएगी तो हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, वो नशा मुक्त हो जाएगा। और ये जो आधिकारिक तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जा रहा है, वो भी सार्थक हो जाएगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बंटी और बबली से आर्टिस्ट अलीशा चेनॉय की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे खेल खेल में सीखे। जी हाँ दोस्तों, खेल खेल में सीखना बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास

का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब बच्चे आनंद लेकर सीखते हैं तो उनका पढ़ाई में ध्यान बेहतर लगता है और सीखी हुई जो बातें होती है वो लंबे समय तक याद रहती है। घर या स्कूल में बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसको हम अपना सकते हैं, जैसे लैंग्वेज एंड अल्फाबेट्स यानी कि भाषा और अक्षर ज्ञान। तो बच्चों को अंताक्षरी अक्षरों की यानी कि सामान्य गानों के बजाय शब्दों या अक्षरों की जो अंताक्षरी है वो खेलना, जैसे क से कमल फिर ल से लड़का। तो ऐसे हम अंताक्षरी के माध्यम से भी बच्चों को खेल खेल में सिखा सकते हैं। और फ्लैश कार्ड गेम यानी कि जमीन पर अक्षरों के कार्ड फैलाए फिर बच्चे को कोई शब्द बोले उसे दौड़कर सही अक्षर चुनना होगा। तो ऐसे बच्चे एक्टिवनेस के साथ खेल खेल में सीखते हैं। कहानी बुनाई यानी कि एक वाक्य आप बोले, जैसे एक जंगल था, फिर अगला वाक्य बच्चों को जोड़ने के लिए कहें, इससे उनकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। यानी कि इतने सारे बच्चे, मानो 10 बच्चे हैं, तो वो एक जंगल था के बाद कोई कहेगा उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, या कहते वो बहुत घना जंगल था। तीसरा बच्चा बोलेगा कि वो बहुत ही डरावना जंगल था, और चौथा बच्चा बोल सकता है कि उसमें एक शेर रहता था। तो ऐसे एक इस जो कहानी बुनाई यानी कि इस एक वाक्य के बाद आपके एक जंगल था के बाद हर बच्चे ने अलग अलग एक एक शब्द जो क्या सॉरी एक एक वाक्य जो बोला है वो उनकी जो कल्पना शक्ति को बताता है। यानी कि हर बच्चा अलग अलग बोलेगा तो वो 10 लाइन हर बच्चे की माइंड में जाएगी। तो ऐसे बच्चे खेल खेल में सीख सकते हैं। और मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स और काउंटिंग में बच्चों को जैसे घर के बर्तनों या सिक्कों को मिलाकर बच्चे उन्हें गिनने और अलग अलग समूह में बांटने का खेल है वो खिलाया जा सकता है। यानी कि शॉर्टिंग जो एक कह सकते हैं एक्टिविटी है, जैसे सिक्कों को अलग करना, बर्तनों को अलग करना। जैसे बच्चों को घर में अगर हम बताते हैं कि आपको बाउल्स है वो अलग करने हैं, स्पून है वो अलग करने हैं, और थाली है उसको अलग कीजिए, तो ऐसा जो वो शॉर्टिंग करेंगे उससे भी बच्चे मैथ सीखते हैं। और जैसे टिक टैक टॉ जैसे कट्टम कट्टा यानी कि गणित में पारंपरिक खेल में बच्चा एक्स और ओ की जगह छोटे जोड़ या घटाव के सवाल जैसे 2+3 लिखकर खेल सकता है। तो इस प्रकार से जो मैथ है वो भी आसान है, वो तरीके से खेल खेल में सीखी जा सकती है। सीढ़ियों की गिनती यानी कि घर की जो सीढ़ियाँ हैं या स्कूल की सीढ़ियाँ हैं उसको चढ़ते उतरते समय जो जो से है वो गिनती गिनकर बच्चे आसानी से नंबर सीख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान विज्ञान की, तो बच्चों को हम जैसे क्या डूबा, क्या तैरा, एक बाल्टी पानी में सिक्का डाला, पत्ती डाली, प्लास्टिक का खिलौना है, पत्थर डालकर हम बच्चों को भारी और हल्की चीज़ों का सिद्धांत सिखा सकते हैं। यानी कि कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट है, कौन सा है वो तैर रहा है, कौन सा है वो डूब रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों को हम खेल खेल में भी सिखा सकते हैं। बदलता मौसम, पेड़ पौधे हैं, अगर हम पार्क में टहलते समय बच्चों को अलग अलग पत्तों के रंग, आकार, फूलों के नाम खेल खेल में बताते हैं तो बच्चे उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और जो ट्रेजर हंट है यानी नक्शा ढूंढो, जैसे घर में कोई खिलौना छुपा दो, बच्चे को है वो आगे बढ़ो, बाएं मुड़ो जैसे निर्देश देकर हम उसे खोजने के लिए कह सकते हैं, इससे उन्हें दिशाओं का ज्ञान भी होता है। तो इस प्रकार से बच्चों को हम जो कह सकते हैं कि ऐसे गेम है उनके माध्यम से खेल खेल में है वो सिखा सकते हैं। तो बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए कुछ है वो ऐसी जो बेहतरीन जो गतिविधियाँ हैं, अनोखी गतिविधियाँ हैं जिनको अभी हमने आपके साथ शेयर किया है, वो आप घर में या स्कूल में है वो अपनाकर बच्चों को खेल खेल में बहुत सारी बातें सिखा सकते हैं। और भी ऐसे जैसे तर्क शक्ति से संबंधित है, जैसे है वो परछाई का खेल है, जैसे रात में टॉर्च की मदद से दीवार पर हाथों से अलग अलग जानवरों की आकृति बनाए, बच्चों को अंदाजा लगाने के लिए कहे कि वो कौन सा जानवर है, इससे उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। और अधूरा चित्र पूरा करो यानी कि कागज पर कोई आधा चित्र बना दे, जैसे आधा है वो हार्ट शेप दिल बना दिया, आधा सेब बना दिया, आधी कार बना दी, उसके बाद बच्चों को उसे पूरा करने को कहे और रंग भरने के लिए कहे, इससे उन्हें समरूपता की समझ आती है। और शारीरिक विकास और संतुलन के लिए यानी कि जो फिजिकल और मोटर स्किल्स के लिए, जैसे फर्श का लावा तो जमीन पर कुछ तकिया या रंग बिरंगे कागज बिछा दे, बच्चे को बिना फर्श छुए एक से दूसरे तकिए पर कूदना होगा, तो हर तकिए को एक नंबर या अक्षर का नाम दे, जहाँ कूदने से पहले बच्चे वह नाम जोर से बोलना है वो
बोलेंगे, तो इससे बच्चे

वो सीखते हैं। और जो हम पुराने, हम कह सकते हैं कि पुराने समय में देखते चम्मच और नींबू की रेस है जो अक्सर हम देखते हैं, तो यह संतुलन बनाने का सबसे अच्छा खेल है जो कि अभी का नहीं, नया नहीं है, ये कब से चला आ रहा है। तो ये जो चम्मच में नींबू या प्लास्टिक की कोई भी छोटी गेंद रखकर एक निश्चित जो दूरी तय होती है, इसमें एकाग्रता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और सोशल इमोशनल लर्निंग है ये बहुत ही जरूरी है आजकल बच्चों में। तो इसके लिए बच्चों को कई ऐसे जो छोटे छोटे रोल प्ले है, मिरर गेम है, वो करवाकर बच्चों को भावनात्मक और सामाजिक सीख दी जा सकती है। जैसे रोल प्ले में बच्चे को डॉक्टर, टीचर, दुकानदार, पुलिस वाला बनने का जो नाटक करने के लिए कहे, इस खेल से बच्चे दूसरों की भावनाओं को समझना, समाज में बातचीत करना सीखते हैं। मिरर गेम की बात करते हैं तो बच्चे के सामने खड़े हो जाए, आप जो भी एक्शन करेंगे जैसे हंसना, रोना, हाथ उठाना, बच्चे को बिल्कुल आईने की तरह तुरंत वह कॉपी करना होगा। यह खेल आत्म जागरूकता बढ़ाता है। और कुछ डिजिटल रचनात्मक तरीके हैं, जैसे रसोई घर की प्रयोगशाला है, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट है, और भी ऐसे कई तरीके हैं जिससे बच्चे हैं वो खेल खेल में सीख सकते हैं। और आज का समय ऐसा है कि बच्चों को खेल खेल में है वो जो पढ़ाई है वो कराई जाती है, खेल खेल में सिखाया जाता है। तो ऐसे जो डूइंग बाई जो लर्निंग है, वो जो तरीका है वो बेस्ट तरीका है बच्चों को सिखाने का। तो हम घर पर भी ऐसा कर सकते हैं और स्कूल है उसमें भी बच्चों को इस प्रकार से सिखा सकते हैं।

0: के रग रग में इस तरह तू समाने लगा,
1: रग रग में इस तरह तू समाने लगी,
0: जैसे मुझको मुझसे चुराने लगा,
1: जैसे मुझको

0: छोरी छोरी चुकी चुकी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली, जो कि भारतीय समाज में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह न केवल एक घर में कई पीढ़ियों को एकजुट रखता है, बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी करता है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे एक साथ रहकर आपसी सहयोग और प्रेम की भावना को बढ़ावा देते हैं।

संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार में बच्चों का बेहतर परवरिश और नैतिक विकास होता है, यानी कि बच्चों को बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलता है और अकेलेपन से मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को दादा दादी से नैतिक शिक्षा, कहानियाँ और अच्छे संस्कार मिलते हैं, और चचेरे भाई बहन यानी कि जो कजिन्स के साथ रहने से बच्चे मिलजुल कर रहना बांटना सीखते हैं और अकेलेपन से उनको मुक्ति मिलती है, और सुख दुख में साथ देना यानी बीमारी किसी संकट के समय पूरा परिवार एक साथ खड़ा रहता है, तो उस समय व्यक्ति है वो भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है और मानसिक तनाव में कमी भी आती है। अपनी बात साझा करने के लिए हमेशा कोई ना कोई उसके पास उपलब्ध रहता है जिससे कि अकेलापन महसूस नहीं होता है, जो कि आज के अगर हम समय में देखें तो आजकल जो व्यक्ति है वो भावनात्मक और सामाजिक तरीके से है वो असुरक्षित हैं, क्योंकि आजकल जो लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, जो एक उनका पर्सनल वे रहता है अकेले रहने का, उससे हर जो व्यक्ति है या आज का अगर हम देखते हैं कि बच्चे हैं उनको मानसिक तनाव है वो ज़्यादा हो रहा है, भावनात्मक रूप से वो कमजोर हो रहे हैं, तो उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि जो लोग हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, जो एक जो फैमिली है यानी कि एकल जो परिवार हो रहे हैं वो परिवार जो बच्चों को है या जो भावनात्मक और सामाजिक असुरक्षा जो बढ़ रही है वो इसी कारण बढ़ रही है, क्योंकि जो पहले संयुक्त परिवार होते थे लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, मानसिक जो उससे तनाव भी लोगों को नहीं होता था क्योंकि जो भी समस्याएं होती थी वो खुलकर बता दी जाती थी, और ऐसे में बच्चों के साथ शेयर करना या ये सारी चीज़ें हैं वो परिवार में ही सीखी चली जाती थी। तो ये जो आज का जो समय है उसमें हमें जो संयुक्त परिवार है वो कम मिलते हैं और उसी कारण है वो लोग भावनात्मक और सामाजिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि खर्चों का बंटवारा होता था, इनके घर का किराया हो, राशन हो, बिजली का बिल हो या कोई भी ऐसे छोटे मोटे खर्च होते हैं तो वो सदस्यों में बांट लिए जाते थे, तो उससे किसी एक व्यक्ति पर है वो भार नहीं पड़ता था, तो आर्थिक लाभ भी होता था। और आर्थिक सुरक्षा कवच की बात करते हैं तो यदि किसी एक सदस्य की नौकरी चली जाए तो भी परिवार के अन्य सदस्य उसे संभाल लेते हैं, और अगर हम बात करें एकल परिवार की, यानी कि जो एकल परिवार में अगर व्यक्ति की नौकरी चली गई तो उसके ऊपर जो पूरी जिम्मेदारी अपने बच्चों की, अपनी जो पत्नी है उनकी होती है, तो वो कैसे वो सबको संभालेगा, तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है कि वो आर्थिक जो संकट जब आता है तो उस समय कोई भी उसके पास आर्थिक सुरक्षा कवच नहीं होता है, और कार्यभार का भी समय विभाजन होता है जिससे घर के काम जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना किसी एक व्यक्ति पर बोझ नहीं बनता है। और नौकरी पेशा की बात करते हैं तो माता पिता बच्चों की देखभाल घर के बुजुर्ग आसानी से कर लेते हैं, तो ये जो सारी बातें हैं वो हमें संयुक्त परिवार में ही मिलती है, और उसके साथ साथ संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण भी होता है, क्योंकि त्योहारों की जो रौनक है वो हमें संयुक्त परिवार में ही देखने को मिलती है, क्योंकि सभी त्यौहार पारिवारिक उत्सव पूरे उत्साह और सामूहिक आनंद के साथ मनाए जाते हैं, सब मिलजुल कर मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं, तो वो जो एक त्योहारों की जो रौनक मिलती है वो हमें संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है, और नई पीढ़ी अपनी जड़ों, रीति रिवाजों, पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी रहती है, क्योंकि सांस्कृतिक जो धरोहर है वो स्थानांतरित जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो है वो कह सकते हैं कि इस प्रकार से संयुक्त परिवार से है वो आसानी से बच्चों में जाती है, यानी कि नई पीढ़ी में जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर है और जो उनकी संस्कृति की जो जड़ें है उनका जो बीज है वो उनको स्थानांतरित होता है संयुक्त परिवार से। तो आधुनिक दौर में जब निजता यानी कि जो प्राइवेसी जो की कमी आपसी मतभेद के कारण जो एकल परिवार का जो चलन बढ़ा है उससे उसके कारण है वो एक मजबूत सुरक्षित संस्कारिक जीवन जीने के लिए संयुक्त परिवार आज भी सबसे उत्तम व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि संयुक्त परिवार का महत्व केवल घर के कामों या खर्चों तक सीमित नहीं है बल्कि कई अन्य गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो पहलू है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं, जैसे संकट प्रबंधन, बुजुर्गों की देखभाल, सम्मान, सामाजिक कौशलों का विकास, ग्रहणियों के लिए एक व्यक्तिगत स्तंभ है, त्योहारों उत्सवों का असली आनंद, ये सारी चीजें हमें है वो संयुक्त परिवार से ही देखने को मिलती है, यानी कि कभी ऐसा हो कि अचानक आई मुसीबत हो यानी परिवार में किसी सदस्य की गंभीर बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु के समय पूरा परिवार एक मजबूत

ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहता है। तो एक भावनात्मक तौर पर जो सुरक्षा मिलती है वो फ्रेंड है वो परिवार में ही मिलती है। और अनुभवी जो बुजुर्ग होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण संकट के समय सही सूझबूझ भरे जो फैसले जल्दी लिए जाते हैं, त्वरित जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी है, वो हमें संयुक्त परिवार में देखने को मिलते हैं। और जो आज हम देखते हैं कि बुजुर्गों के देखभाल की जो समस्याएं रहती है लोगों के सामने, तो एक सुरक्षित जो वृद्धावस्था है दादा दादी माता पिता को बुढ़ापे में अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भरा पूरा परिवार होता है, बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो उनका जो वृद्धावस्था है वो भी एक सुरक्षित निकलती है। और समय पर चिकित्सा मिलती है, यानी कि बीमारी की स्थिति में हर समय कोई न कोई देखभाल के लिए घर पर मौजूद रहता है। तो इस प्रकार से जो एक संयुक्त जो परिवार है उसके बहुत से अनगिनत फायदे हैं। इन अनगिनत फायदों में है वो हम अभी हमने आपके साथ चर्चा की है बहुत सारे फायदों की। तो आजकल के दौर के लिए अगर हम प्राइवेसी की जो बात करते हैं, तो प्राइवेसी का जो समय है लोगों में, जो एकल परिवार यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली जो बढ़ती जा रही है, उन न्यूक्लियर फैमिली के हैं बहुत से साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि ये जो जितनी भी विशेषताओं की अभी हमने बात की जो संयुक्त परिवार की, वो है वो उन बच्चों को ऐसी जो कह सकते हैं कि एक वैल्यूज़ है वो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि एक परिवार में सिर्फ माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो माता पिता इतने व्यस्त रहते हैं बच्चों की देखभाल के लिए या अर्निंग करने के लिए, वो उतना समय वो बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों के एक भावनात्मक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो उनके अंदर जो वैल्यू आने चाहिए, जो सीखना उनको चाहिए, जो बच्चे सीखते हैं अपने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर यानी कि संयुक्त परिवार में, वो उन बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो आजकल हम जो देखते हैं कि बच्चे भावनात्मक तौर पर कमजोर है, उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमताएं नहीं है। आजकल हम देखते हैं बच्चा फेल हो जाता है तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। कई ऐसे केस हम सोशल मीडिया पर या पेपर में देखते हैं, न्यूज़ पेपर में, बच्चे हैं वो गलत संगत में पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं वो उनके अंदर ये कोई भी चीज़ें सहन करने की शक्ति नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल जो उनकी परवरिश है वो परवरिश इस तरीके से हो रही है कि उनके अंदर मजबूती नहीं आ रही है, वो किसी चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे, सीधे वो डाउन में चले जाते हैं। यानी कि उनको डर रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, अगर हमें ये नहीं मिला तो मतलब मेरी दुनिया पूरी ख़त्म हो गई। तो ये जो एक जीवन के लिए जो उनकी एक समझ है, वो समझ भी उनके अंदर नहीं आ रही। वो सिर्फ एक चीज़ को पाने और खोने तक है वो जीवन को समझ रहे, लेकिन उनको जीवन में बहुत सारी है वो खुशियाँ होती है। जीवन बहुत ही एक कह सकते हैं कि भगवान का एक सुंदर जो तोहफा है हमें, उस तोहफे को हमें कैसे है वो उसको जीना है, ये सारी जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो संयुक्त परिवार में मिलती है।

सुन रहे थे फिल्म दिल है तुम्हारा से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे पीएम जन औषधि केंद्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है जिसके तहत आम नागरिकों को 50% से 90% तक कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक जो दवाइयां हैं वो दी जाती है। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इलाज के खर्च को कम करना है। यहाँ दोस्तों ब्रांडेड दवाओं जैसे कि असरदार दवाइयां बेहद कम दाम पर मिल जाती है और यहाँ मिलने वाली सभी दवाइयां WHO GMP प्रमाणित होती है और लैब्स में जांची जाती है और महिलाओं के लिए भी है वो 1 रुपए में सुविधा यानी कि सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं और इन जो केंद्रों पर 2000 से भी ज़्यादा जो दवाइयां हैं वो 300 से ज़्यादा सर्जिकल आइटम हैं वो मिलते हैं। तो जन औषधि केंद्र है, अगर कोई खोलना चाहता है तो उसके लिए भी एक रोजगार का मौका है, यानी कि यदि आप खुद का जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए वित्तीय सहायता भी देती है, यानी कि इसके लिए सहायता सरकार द्वारा मिलती है लेकिन आपके लिए है वो जरूरी योग्यता होना भी जरूरी है, यानी कि आपके पास डिग्री की बात करते हैं तो आवेदक के पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए और यह वह किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को काम पर भी रख सकता है और जब आप खुद की या किराए की कम से कम 120 स्क्वायर फिट की दुकान होनी चाहिए और फीस और सरकारी मदद यानी कि आवेदन फीस सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन फीस 5000 है। फीस में छूट की बात करते हैं तो महिलाओं दिव्यांगों SC ST और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन फीस बिल्कुल मुफ्त है और सरकार द्वारा दुकान चलाने के लिए 5 लाख तक की सहायता देती है और उत्तर पूर्वी राज्यों और पिछड़े इलाकों में 2 लाख की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है और इसके लिए आवेदन आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री ये जन औषधि जो केंद्र है ये जन औषधि सुगम यानी कि एक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी हम दुकान का पता लगा सकते हैं, दवाइयों की कीमत की तुलना कर सकते हैं और दवा की उपलब्धता है उसके बारे में भी हम घर बैठे चेक कर सकते हैं, यानी कि आप अपने नज़दीकी जो जन औषधि केंद्र है उसको मैप पर खोज सकते हैं। दवाइयों की कीमत यानी कि आप किसी भी ब्रांडेड दवा का नाम डालकर यह देख सकते हैं कि जन औषधि केंद्र में उसी सॉल्ट की जेनरिक दवा कितने कम दाम में उपलब्ध है और आप घर बैठे यह भी चेक कर सकते हैं कि आपकी दवा नज़दीकी केंद्र पर स्टॉक में है या नहीं है। तो ये भी जन औषधि सुगम जो मोबाइल ऐप है उसकी आपको जब वो आप डाउनलोड करते हैं तो ये सुविधा आपको घर बैठे मिल जाती है और जो दवाइयों पर जो मार्जिन होता है वो दुकानदार को दवाइयों की बिक्री पर लगभग 20% का सीधा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। सर्जिकल आइटम्स पर यह मार्जिन 10% होता है और आपकी दुकान से होने वाली जो मासिक खरीदी है उसका 10% सरकार इंसेंटिव के रूप में वापस देती है। तो यदि आप सरकार द्वारा निर्धारित 200 सबसे ज़्यादा बिकने वाली ब्रांड प्रोडक्ट का पर्याप्त स्टॉक रखते हैं तो 10,000 प्रति माह का अलग से बोनस है वो आपको मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो जन औषधि जो केंद्र है ये पीएम जन औषधि केंद्र है वो बाजार की जो तुलना में है वो गरीब और सामान्य जो वर्ग के लोग हैं उनको ये आसानी से है वो आसानी से और सस्ती दवाइयां है वो उपलब्ध करवाता है। तो श्रोताओं अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अपनी दोस्त अर्चना को दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारी सांझे सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 6:30 पर श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस। आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे रामचरितमानस का क्रमांक 108। शाम 6:15 पर श्रोता सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं नरेंद्र संसार। शाम 7:00 ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ग्राम जगत। शाम 7:30 पर श्रोता सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का लुत्फ श्रोता उठा सकते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में और समय होगा रात्रि 8:00 का। रात्रि 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे चंदन दास की गाई हुई गजलें।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारी सांझ सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं लीजिए सुनिए रामचरितमानस।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है।

0: घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्याम वर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।
1: छरे छबीले चयन सब सुर सुजान नबीन जुगपद चर अस्वार प्रति जे असि कला प्रवीण।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं, इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। नीचे सुनिए भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं नरेंद्र चंचल।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से।
1: सेठ धनालाल को ही ले लो, उनके घर में एक नहीं चार चार शौचालय बने हुए हैं और आज उनके घर में किस चीज की कमी है बताओ।
2: लेकिन हरी भाई,
1: अरे देखो ज्ञानचंद, अब लेकिन वेकिन छोड़ो और अपने घर में शौचालय बनवाओ। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने घर की औरतों के बारे में सोचो। और अब तो घर में शौचालय बनवाने के लिए सभी ग्राम पंचायतें अनुदान भी देती हैं।
2: ठीक है हरी भाई, मुझे आपकी बात सही लगती है, मैं आज ही सरपंच जी के पास जाता हूँ और इसकी सारी जानकारी लेता हूँ। लेकिन अभी तो मैं चलता हूँ,
1: अरे लेकिन
2: पेट में जोरों से गुड़गुड़ हो रही है।
3: अरे शौचालय जरूर बनवा लेना।
2: हाँ हाँ जरूर बनवा लूंगा।
4: गाँव गाँव की गली गली और घर घर में बतला दो शौचालय बन।
5: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदले आगे बढ़े, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर जयपुर में कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वेरिको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ODOP कॉफी टेबल बुक और रैम पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। समारोह में रिको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्य मंत्री के विश्नोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। युवाओं और नई पीढ़ी में नशे तथा मादक पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने और उन्हें जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। श्री शाह ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1,18,00,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं।
7: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोड मैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
6: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। दीघ में जिला कलेक्टर राजकुमार कसवां की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई। नागौर में साइकिल जागरूकता रैली निकालकर नशा नहीं करने का संदेश दिया गया। जैसलमेर में माए भारत के स्वयं सेवकों ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर आम जन को जागरूक किया। पाली के बाली में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान समाज को नशे के नुकसान से जागरूक किया गया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग करने का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल से आगामी 4 जुलाई से उड़ानें संचालित हो जाएंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों को बताया कि नए टर्मिनल से

0: हवाई सेवाएं शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहां पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
1: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं, अभी तो पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग की आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों की याद में जुलूस के साथ ताजिए निकाले जा रहे हैं। इन्हें कर्बला मैदानों में परंपरागत तरीके से दफनाया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश भर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मजलिसें और धार्मिक सभाएं आयोजित की गईं। जयपुर के रामगंज, दिल्ली रोड और चार दीवारी क्षेत्र में जगह जगह लंगर और पानी की छबीलें लगाई गईं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर मुहर्रम के मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन ने फातिहा पढ़ी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमा धारीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आमजन से इस मॉनसून के दौरान अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज जयपुर के निमेड़ा स्थित एक गौशाला में आयोजित धार्मिक आयोजन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यों का आधार है। राज्यपाल ने गायों को चारा खिलाकर लोगों को जीवों के प्रति करुणा और दया भाव बनाए रखने का आग्रह किया। देश को सर्वाधिक सैन्य कर्मी देने वाला झुंझुनू जिले के वायु सैन्य कर्मी सुरेंद्र मोगा के सर्वोच्च बलिदान को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट में शामिल किया गया है। सार्जेंट मोगा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए प्राण न्योछावर किए थे। उनके साथ 5 अन्य जवानों को भी वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर भी सुरेंद्र मोगा का नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद भारतीय सैनिकों की सही सूची देश को देने की बात कही थी। भीलवाड़ा में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की ओर से औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि इस अवसर पर युवा संबल मेला भी आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमी के तौर पर प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। झुंझुनू जिले के कुतुबपुरा गांव में नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान की ओर से आज नॉन वाटर शेड परियोजना का शुभारंभ हुआ। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ने ग्रामीणों को वर्षा जल संरक्षण अपनाने और खेतों में अजोला और कम पानी की फसलें उगाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में बैंकिंग सेवा के विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की भी बात कही। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। इस दौरान दक्षिणी जिलों में भी कई जगह पर तेज बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार झालावाड़ जिले के अकलेरा में सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर बारिश रिपोर्ट हुई। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहे और कई जगह पर बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस बीच मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में भी आगे बढ़ा है। इसके अगले हफ्ते तक मध्य और उत्तरी भारत तक पहुँचने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं। IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। प्रायोगिक तौर पर शुरू होने वाली इस 11 दिन की रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों

पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए आईआरसीटीसी के टूरिज्म पोर्टल पर या आईआरसीटीसी पर्यटन कार्यालयों पर बुकिंग कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मातमी पर्व मोहर्रम आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिले में सुबह से ही रंग बिरंगे ताजिए निकाले गए। इस दौरान मोमिनों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किए। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए शहर की निगरानी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। शांति समिति की बैठक में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने जुलूस के दौरान अफवाह, नशा, गुंडागर्दी या अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। पिछले दिनों पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने चित्तौड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सहकारी संस्थाएं समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बैंक की प्रगति और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं आम जन को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के जन कल्याण के की थीम पर 3 दिवसीय जिला प्रदर्शनी भी लगाई गई। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री के तहत राज्य सरकार एवं एलिम्को के सहयोग से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और सांसद सीपी जोशी ने शिरकत की। शिविर में 800 वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ सांसद और एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में उदयपुर में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को पश्चिम भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एवं विमानन केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने एयरपोर्ट पर टर्मिनल विस्तार, वाईफाई, डिजिटल सूचना प्रणाली, रनवे विस्तार, कार्गो हब एवं एयरो सिटी विकास की संभावना पर विस्तृत रोड मैप तैयार करने का भी सुझाव दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने भारतीय पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग, नगर परिषद और UIT अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने दुर्ग पर हुए अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई कर अतिक्रमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में दुर्ग में विकसित की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, विद्युत साज सज्जा और यातायात प्रबंधन को भी प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ई वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए वेस्ट संग्रहण अभियान का शुभारंभ करते हुए ई वेस्ट रथ को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर ने आमजन से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की अपील की। इसी कड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत चित्तौड़ दुर्ग पर महास्वच्छता अभियान चलाया गया। जिले में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु सुरेश शर्मा और डॉक्टर मुकेश माली ने योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के दौरान योग स्थल पर LED स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु के प्रादेशिक समाचार।

0: વ્યવસ્થા, આર્થિક હિતા અર યુવામારે ભવિષ્ય ખાતર મોટો ખતરો હૈ. શ્રી શર્મા આધ્યાત્મિક નેતાવા યુવામાં અર માતાવા શું ઇણ અભિયાનમાં મિલર ભાગ લેવારી અરજ કરી હૈ. ઇણ મોકે માથે શ્રી શાહ કહ્યો કે વારી સરકાર રે કાર્યકાલ રે ચાલતા 1,18,00,000 કિલો સુ બત્તી નશીલા પદાર્થાને જપ્ત કર્યો ગયો હૈ. વણા કહ્યો કે ઓ આંકડો નશીલા પદાર્થારી તસ્કરી રે ખિલાફ સરકારરી લગોતાર કાર્યવાહીને દર્શાવે હૈ.
1: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है. पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस. इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें. दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल. उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है.
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस माथे प्रदेश माए न्यारी न्यारी जगावा माथे कार्यक्रम राख्या गया. डीग माए जिला कलेक्टर राजकुमार कसवारी अध्यक्षता माए कार्यक्रम राख्यो जो इन माए लोगा ने नशा मुक्त भारत अभियान री जानकारी दी. नागौर माए साइकिल रैली निकालर नशो नी करने रो संदेश दियो. जैसलमेर माए भी भारत माए भारत रा स्वयं सेवका नशा रे दुष्प्रभाव रा बारा माए जानकारी दी. पाली रा बाली माए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय री कानी सु कार्यक्रम राख्या गया. इन रे चालता समाज ने नशे रे नुकसान सु जागरूक करियो गयो और नशा मुक्त भारत रे निर्माण माए सहयोग करने रो संदेश दियो गयो. स्वास्थ्य मंत्रालय दवा नियमा माए संशोधन रो मसौदो जारी करियो है. इन रे तहत आयात करी जावण वाली दवावां री बचोड़ी वैधता अवधि यानी सेल्फ लाइफ आयात रे बखत कम सु कम 12 महीना होनो जरूरी वेला. हालांकि जैविक दवावां और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवावां खातिर मौजूदा नियम लागू रहवेला. इन खातिर आयात्री बखत कम सु कम 60% सेल्फ लाइफ होनो जरूरी वेला. मंत्रालय रे मुजब इन संशोधन सु दवावारी गैर जरूरी बर्बादी कम वेला और दवा भंडार रो बेहतर उपयोग वे सकेला. मंत्रालय स्पष्ट करयो है ओ प्रस्ताव केवल आयात रे बखत दवावारी बचोड़ी सेल्फ लाइफ सु जुड़ियोड़ो है. जोधपुर हवाई अड्डा माथे नुआ टर्मिनल सु आवती 4 जुलाई सु उड़ाना संचालित वेला. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर माए पत्रकारा ने बतायो कि नुआ टर्मिनल सु हवाई सेवावां शुरू होने सु पश्चिमी राजस्थान री कनेक्टिविटी बदली और पर्यटन और औद्योगिक विकास ने नूवी ऊंचाइयां मिलेली.
2: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अभी तो पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है. जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग की आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए. ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है. माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे.
0: ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र से सुन रिया हो. पैगंबर मोहम्मद रा नवासा हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है. इन मौके माथे शहीदा री याद माए जुलूस रे साथे ताजिया निकाला जा रिया है. इन्हें करबला मैदान माए परंपरागत रीत सु सुपुर्दे खाक करियो जा रियो है. इन सु पहले प्रदेश भर माए मुस्लिम बाहुल्य इलाका माए मजलिसा और धार्मिक सभावां राखी जी. जयपुर रा रामगंज दिल्ली रोड और 4 दीवारी खेतर माए जगह जगह लंगर और पानी री छबीला लगाई जी. अजमेर माए मुहर्रम रे मौके माथे खासो उछास देखियो जा रियो है. ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती री दरगाह माथे फातिहा पड़ी और ब्यूरो माणा खबर नवीस.
3: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं. ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया. वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है. दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा. नलमद हादीज आकाशवाणी समाचार अजमेर.
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आम जनसू इन मॉनसून रे चालता 32 पेड़ लगाने रो हेलो करियो है. राज्यपाल आज जयपुर रा निमेड़ा थापित एक गौशाला माए राखी जा धार्मिक आयोजन माए भाग लियो. इन मौके माथे वणा कहो कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यारो आधार है. राज्यपाल गाया ने चारों खिलार लोगा ने जीवा

0: प्रति करुणा और दया भाव बनाए रखने री अरज भी करी। देश ने सबसू बत्ती सैन्य कर्मी देवन वाला झुंझुनू जिला रा वायु सैन्य कर्मी सुरेंद्र मोगा रे सर्वोच्च बलिदान ने नेशनल वॉर मेमोरियल री वेबसाइट माए बेड़ो करो गयो है। सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर रे चालता देश खातिर आपरा प्राण न्योछावर करया हा। मारे साथ दूजा 5 जवाना ने भी वेबसाइट रे रोल ऑफ ऑनर माए भेड़ो करो गयो है। इनके साथ ही युद्ध स्मारक री 3D वॉल माथे भी सुरेंद्र मोगारो नाम लिखो गयो है। ध्यान जोग है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद माए एक सवाल रे जवाब माए ऑपरेशन सिंदूर रे चालता शहीद भारतीय सैनिकारी सही सूची देश ने देने री बात कही ही। भीलवाड़ा माए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र री कानिसू औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगायो गयो। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा बतायो कि इन मौके माथे युवा संबल मेलो भी राख्यो गयो। इनरो लक्ष्य युवाओं ने उद्यमी रे तौर माथे प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार खातिर प्रेरित करयो गयो है। झुंझुनू जिले रे कुतुबपुरा गांव माए नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान री कानिसू आज नॉन वाटर शेड परियोजना रो शुभारंभ हुयो। नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ग्रामीणा ने बिरखा रे पानी ने भिड़ो करने और खेता माए अजोला और कम पानी री फसलां उगाने रो हेलो करयो। इन मौके माथे वणा खेतर माए बैंकिंग सेवावां रे विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनावां री शुरुआत री बात भी करी। IRCTC नुओ पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू करियो है। इन रे खातिर भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जावेली। प्रायोगिक तौर माथे शुरू होने माथे इन 11 दिन री रेल यात्रा रे चालता श्रद्धालुआ और सैलानिया ने उत्तर प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल और झारखंड रे खास तीर्थ स्थला माथे जावन रो मौको मिलेला। आ यात्रा दिल्ली माए सफदरगंज रेलवे स्टेशन सु शुरू वेली। रेलगाड़ी माए यात्रियों ने 3-स्टार होटल माए रुकाणो भोजन समेत AC वाहना माए दर्शनीय स्थल माथे घुमाया जावेला। इनरे खातिर IRCTC रे टूरिज्म पोर्टल माथे या IRCTC पर्यटन कार्यालय माथे बुकिंग कराई जा सके है। और अब मौसम प्रदेश माए लाडला 24 घंटा रे चालता पूर्वी और पश्चिमी भागा माए कुछ एक जगावा माथे बारिश की गतिविधियां दर्ज करी जी। इनरे चालता दक्षिणी जिला माए भी कई जगावा माथे तेज बिरखा दर्ज हुई। मौसम महकमे रे मुजब झालावाड़ जिला रा अकलेरा माए सबसू 32.5 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज हुई। राजधानी जयपुर समेत आसे पासे रे इलाका माए आज बादल छाया रिया और कई जगावा माथे बूंदाबांदी भी। महकमा रे मुजब हालता 2-3 दिना माए बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग माए प्री मानसून री बिरखारी गतिविधियां बणियोड़ी रह सके है। इन बीच मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश रे कई और भागा माए आगे बढ़ियो है। इन रे अगले हफ्ते ताई मध्य और उत्तरी भारत ताई पहुंचने खातिर परिस्थितियां अनुकूल बणियोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। ओ मासिक रेडियो कार्यक्रम रो 135वो एपिसोड वेला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप माथे करियो जावेला। साथ ही AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा YouTube चैनल माथे इनरो सीधो प्रसारण भी वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पाछे क्षेत्रीय भाषा मा माए भी कार्यक्रम रो प्रसारण करियो जावेला। और आखिर माए खास खास खबरां आप एक कर फेरू सुनो। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर माए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला। गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस रे मौके नशे रे खिलाफ एकजुट होर युद्ध छेड़ने रो हेलो करयो। हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथ मनायो जा रियो है। मातम रे बीच करबला माए ताजिया दफनाया जा रिया है। और प्रदेश माए लाड़ला 24 घंटा माए कुछ एक थोड़ा माथे बिरखारी गतिविधियां जारी। मानसून रे अगले हफ्ता ताई और आगे बदवारी आस है। इन रे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पुरोव्यो माणा। आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: आप आपने ट्यून किया।

है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: अपने पाछे तो जोया करी तो आप उम्मीद करो कि भाई समय में बरसात जरूर होते और बढ़िया होते किसान भाई वास्ते जो बारानी खेती किया करे। और वो साथ साथ
1: राजस्थान
0: में
1: में देखो कुछ आपर प्रदेश है जैसे आप आना सुन रहे हो की बारिश शुरू हो भी गई है। जहाँ पता है जैसलमेर में तो वैसे भी बारिश बहुत जो है देरी तो आया करे। और साथ साथ देखो आप ये कार्यक्रम जरिए अलग अलग विषय में तो बात करे करें। आज जो आप चर्चा विषय है
0: उन्नत
1: उन्नत किस्म
0: किस्म
1: बकरी पालन, बकरी पालन में नई या उन्नत नस्ल उपयोग उस मुनाफा होना और साथ साथ जो कम समय में अधिक जो दूध या और जो आपने प्राप्ति होगी और मैं आज आपको बातचीत करता हूँ।
0: तो ये मैं देखो सबसे पहले आपनों तय करना है कि आपनों जो है बकरी पालन नो मुख्य आप उद्देश्य की है आपों सिर्फ और सिर्फ दूध वास्ते बकरी पालन करना चाहो या वो ना जो है वो एक बीजो भी लाभ या जो व्यवसाय है बकरियां और बकरों जो मांस वास्ते अगर प्रयोग होया करे तो सबसे ज़्यादा अपन मांस वास्ते जो उन्नत नस्ल की बकरियां है वो मैं एक ब्लैक बंगाल है और सिरोही नस्ल
1: सिरोही
0: है और उसके बाद में विदेशी नस्ल जो है वो बोर है। और अगर आप दूध वास्ते बकरी पालन करना चाहो तो उसके वास्ते सानन है, अल्पाइन है और
1: या न्यूबियन
0: न्यूबियन
1: है।
0: है। ये तरीके से मतलब जो है यार इस्तेमाल ब्रीडिंग रेम में किया जाए और उसके बाद में जो आप नस्ल या उत्पादन प्राप्त हुए वो आप वास्ते दूध उत्पादन आज बढ़िया होया करे। प्रजनन दर में वृद्धि वास्ते जो है बड़ी बड़ी नस्ल भी है और उसके अलावा जो आप पहले बताया ब्लैक बंगाल है ये जो छोटी नस्लों एक बार में 2 से 3 बच्चा दे तो ये रास्ते यहाँ नस्लों मतलब सुधार वास्ते आदर्श माने जाओ या ना।
1: देखो
0: और
1: आज के टाइम में जो है और वैज्ञानिक तकनीक की अगर बात करो तो कृत्रिम गर्भाधान जरिए भी जो है आप उन्नत नस्ल प्राप्त कर सको। हमें जो उन्नत नस्ल वास्ते सीधा आयात करने वाले की बजाय उन्नत बकरे और जो सीमा है वो इस्तेमाल करके स्थानीय बकरी वाले गाभिन करवा सको। इसको जो है काफ़ी किफ़ायती तरीके ने तो पहले तो कि ये दूर दराज से जो है मंगावनी पड़ती थी आयात करनी पड़ती थी लेकिन हमें आपको कृत्रिम गर्भाधान जरिए
0: ये जो को आपको थोड़ा बात बताई ये इसमें एक चीज़ तो स्पष्ट जरूर है कि भाई आपको चाहे मतलब उन्नत खेती करनी चाहो या उन्नत पशुपालन जैसे में चाहे वो गौ पालन रहे या पशुपालन रहे आपनों जो को है आपोरी सरकार या जो आप सरकारी विभाग है खेती किसानी वास्ते आपोरा आपरी काजरी आपोरा कृषि विज्ञान केंद्र है और पशुपालन वास्ते आपनों जो को प्रदेश का आप पशुपालन विभाग है उसको स्थानीय जिला मुख्यालय में थे गुरु कार्यालय होया करे वो सो आप अगर संपर्क करो तो यह सब चीज़ों के वास्ते यह सब कार्यों के वास्ते आपनों वो सो जानकारी और सहयोग आपनों मिल सके क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार रो जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भाई किसानों की आय ना बढ़ावनो दोगुनी करना और उसके वास्ते वो खेती रे साथ साथ में जो खेती रे साथ वैकल्पिक व्यवसाय है उमरे मोए भी वो प्रगति करे या वो नवाचार करे वो उन्नत तरीका अपना और साथ में उसमें आप आय बढ़ावे तो यहाँ सब काम जो आप कहो कि भाई अगर कृत्रिम गर्भाधान वगैरह अगर अपन काम लेना हो से तो निश्चित रूप से अपना जिला पशु चिकित्सालय में आप संपर्क करना हो से और वो आप ये में सहयोग कर से।
1: देखो मैं तो आपको बातचीत करी हूँ चर्चा करी हूँ और भी आपको बातचीत करते हो लेकिन थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए
0: आप
1: भाइयों के
0: और
1: साथ में।
0: कार्यक्रम मुख्य हिस्सों आप
1: भैया
0: योग संस्कृति
1: राजस्थानी लोकगीत गोरबंद
0: बिल्कुल
1: कंदर
0: सुनाओ
1: खान और सतार खान और रमजान खान की आवाज़ में
0: बिल्कुल सुनाओ सर
1: गोरबंद।

राज मारू।

ಕಾವೇರಿ ರಾಜ ಮಾರು ಗುರಿಯೋ ಬಾಳ ಕಾಲವಳ ಕಾವೇರಿ ರಾಜ ಮಾರು

0: तो देखो भाई, आप सुनिए बढ़िया राजस्थानी लोकगीत और बन नकरा दो। आज 26 जून है, हर जो दिवस है वो कुछ ना कुछ विशेष तो होया करें। 26 जून जो है बहुत ही विशेष दिवस के रूप में मनाया जावे, क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है उन्होंने लेके जो है दिवस बहुत ही विशेष है। विश्व नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून में मनाया जावे। ये उद्देश्य है लोगों ने नशीले पदार्थ और दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, नशे की रोकथाम वास्ते समाज में प्रेरित करना, नशे की लत से पीड़ित लोगों का उपचार पुनर्वास और प्रोत्साहन देना। यह दिन हमेशा यह संदेश दिया करे कि स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सुरक्षित समाज के निर्माण में नशा मुक्त जीवन अत्यंत आवश्यक है।
1: कि आज के टाइम में होती है कि शराब है, तंबाकू है, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और इसके अलावा न जाने कई था कितना मादक पदार्थ बन गए, और जो नशेरा कारोबारी है वो आप रे थोड़े सी मुनाफे वास्ते ये तरीके रो जो को समाज रे मोए तकरु फैलावे या कैसे कहें कि बेटी ज़्यादा बर्बादी न समाज और धकेले। पर एक जो को गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुकी है, और विशेष रूप से जो को युवा वर्ग है वो जो को सोच है वो एकदम गहरी कौन गया, वो थोड़ी सी क्षणिक सोच रहे मैं यदि गलतियाँ कर जाओ और ये चपेट में आ जाओ।
0: शुरुआत में क्यों है कि अक्सर शौकिया कह दो, जिज्ञासी कह दो, या तनाव में भी कई बार जो या एक दूसरे के दबाव में कभी नहीं आप एक कहावत है कि संगत रो असर।
1: बिल्कुल,
0: कई बार संगति रे असर एक जब आदमी लगे कि हूँ काम कर रहे हो तो आप साथ में जो दूसरा संगति लोग हो भी उन्होंने भी वो तरफ ले जाऊँ की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे की है कि वो जो हमारी आदत है वो लत बन जाऊँगी, और ये प्रभाव केवल एक व्यक्ति मत गुण देवे बल्कि वो पूरे परिवार, समाज, और अगर आप बात कर सो तो आज स्तर में अगर बात करो तो ये असर पूरे देश में देखना पड़ रहा है। नशा के कारण व्यक्ति रोज को है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुई, विशेषकर हृदय, फेफड़ा, यकृत और मस्तिष्क संबंधी जो गंभीर बीमारियां हैं वो ये नशीले पदार्थों से ही आया करे। इसके अलावा कई लोगों की याददाश्त जाना, तनाव, अवसाद, चिड़चिड़ोपन, आत्मविश्वास में कमी, यह समस्याओं जो है उत्पन्न होया करे नशे लत के कारण। पारिवारिक कलह भी देखना मिले, लोगों ने आर्थिक रूप से जो है संकट भी आई, कई तरह का अपराध भी हुई, सड़क दुर्घटनाओं भी हुई, कार्य क्षमता में जो है गिरावट आई, यह सब समस्याओं जो है नशे की लत के कारण।
1: और यह सब चीज़ों देखते हुए जो नशे से बचाव वास्ते सबसे पहले सही संगति रो चयन करना आवश्यक है, और युवाओं ने जो है खेल, योग, व्यायाम, संगीत, पुस्तक पढ़नो और ये तरीके की अन्य रचनात्मक जो गतिविधियाँ होया करे वे में आप समय देना चाहिए। परिवार और विद्यालय बहुत दायित्व है कि वो बच्चों ने बच्चों और युवाओं ने जो है नशे नशे दुष्प्रभाव के बारे में समय समय में जागरूक करें।
0: देखो कोई व्यक्ति अगर नशे लत शिकार हो गए तो सबसे पहले तो उन्हें कोई भी तरह की फटकार मत लगाओ, तिरस्कृत मत करो, बल्कि उन्हें उचित परामर्श दो, चिकित्सक की सलाह लो, और आसपास जो को अच्छे लोगों की संगति दो, पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराओ। विश्व नशा निरोधक दिवस केवल इस दिवस को नहीं बल्कि समाज में जागरूक करने एक महत्वपूर्ण अभियान है। आप स्वयं नशे से दूर रहसो, दूसरों में भी ये दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करसो तो आप नशा मुक्त जो देश रो सपनों देख सको। यदि

0: प्रत्येक नागरिक नशा मुक्त जीवन अपनाए और संकल्प ले से तो स्वस्थ सुरक्षित समृद्ध और खुशहाल समाज निर्माण होते है। आओ आप सब मिलकर एक संकल्प लो, मैं स्वयं नशे से दूर रहूंगा, या आप मतलब जो कि अगर लड़कियां हैं तो रहूंगी कैसे भी, और आप
1: परिवार
0: और
1: समाज को भी नशे और दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करेंगे तथा नशा मुक्त भारत निर्माण में आप योगदान देंगे।
0: नहीं, नशे वास्ते कई नारा भी जो सरकारी तरफ से भी है और नशा मुक्ति अभियान ना जो समाह के उम्र तरफ से भी है। नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो,
1: नशे से दूरी खुशहाली है जरूरी,
0: स्वस्थ युवा सशक्त भारत,
1: नशा मुक्त परिवार खुशहाल संसार,
0: नशा नहीं शिक्षा और संस्कार सुने।
1: आज का संकल्प नशा मुक्त भारत स्वस्थ भारत। तो देखो नशे के बारे में जो है आप भाइयों से आज बातचीत करी, देखो आप कैलाश भाई अलग अलग विषयों में से बातचीत करो, लेकिन जो विषय आज रो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय। देखो आप भाइयों ने जानकारी दें कि खेती में करो, पशुपालन में करो, या फिर आप जो और भी किसी चीज़ों में चाहे बीजारोपण हो, चाहे आप सिंचाई हो, ये सब मतलब तो बातचीत करो, ये सब ठीक है, लेकिन जो नशा है ये युवाओं ने विशेषकर आपकी तरफ जब अग्रसर कर रहे हैं, तो आप भाइयों से हाथ जो निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये नशा मुक्ति न रोकने का प्रयास करें। अगर आसपास देखो ये शुरुआत आप अपने घर से या अपने परिवार से कर सकें, पड़ोस से कर सकें, ये दौरान अगर आपना कोई नशा मुक्ति आपना दिख रही है नशा का तो आप कोई रिश्तेदार उन्हें रोकन में अगर आपना वो दुश्मन भी बनना है तो वो में कोई दोराई को नहीं।
0: पर जो था एक बात है, ठीक है, अगर आप और पारिवारिक सदस्य नशे से अगर जोड़ है दिखे तो अपन और दुश्मन बढ़ने आवश्यकता को नहीं, आप डांट देनी तिरस्कृत नहीं कर दे, लेकिन ये दुश्मन अपन अगर नशा तस्कर या नशेरा जो सौदागर है वास्ते भी अगर आप सीधे दुश्मन नहीं लेता हूँ तो भी आप एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने नाते आप ये जिम्मेदारी और आप कर्तव्य बने या आप जो कोई संबंधित विभाग जो कोई निगरानी करे या जो कोई रोकथाम वास्ते जितने पुलिस और मादक पदार्थ जो निरोधक विभाग है आप जो आबकारी विभाग के जी उन्होंने आप अगर सूचना दे दी तो आप नाम गुप्त रखे जाओ और आप एक आप परिवार सदस्य ने अपन बचा रहे आप जो पूरे देश में बचे समाज में बचा रहे आप और उनमें भी कई बार है भाई कि अगर आप ये तरीके से कन्नी काट दिए कि आपको नौकरी करना आप पर परिवारों को सदस्य गिरफ्त न को नहीं, पर आज वो ये गिरफ्त न को नहीं काल हो सके वास्ते आप ये व्यापार ये व्यवसाय में रोकने वास्ते भी जितनी आप जिम्मेदारी हो सके आप निभानी चाहिए।
1: देखो बहुत बढ़िया बढ़िया बात हो गई आप हम देखो आप बातों जो है घुमा सो कुछ मनोरंजन कर सो और एक बहुत ही बढ़िया जो है सुंदर सो गीत आप भजन सुना सो जिसका बोल भी प्यारा है और वो गीतरा बोल है बोली प्यारी लागे, सतार खान रमजान खान की आवाज में सुनता हूँ बोली प्यारी लागे।

हरी लागे हरी मजल से प्यारी घड़ी लागे रे बोली रे प्यारी लागे हरी मजल

0: थारी बोल जारी लागे ओ सैया मारू रे थारी बरिया मारू रे थारी बोल जारी लागे बोल जारी जारी लागे थारी
1: आज कार्यक्रम टाइम पूरी भाई लोगों से लिया ठीक कर दे राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम।

காதலியே. अब को घूमनी हो थे तो घूमता जी जो थोड़ो सो घूमता जी जो री भारी छोटी हमारी नैनी नड़ डले भाई रा पीरा रे माले माना ली ता जई जो रे

अब को दतड़ियों से तो करता जी जो दतड़ियों करता जी जोरी मारी छोटी आ मारी नैनी नने दले बैरा पीरा रे रूमाल मना लेता जी जोरी।

लेता जी जो री मनड़ो देवता जी जो दिलड़ो देवता जी जो री मारी छोटी नड़ डले बैरा पिरारी रूमाल माना लेता जी जो री अरे बगारी बारे तारे माना।

लेता जय जो रे मनड़ो देवता जय जो दिलड़ो देवता जय जो रे मारी छोटी नर दले भाई रबी रे रूमाल मारो लेता जय जो रे छोटी।

शरमने वारे देव तो हरे के मिठी बोली कोयल री बागरी मन राज कोयल री हरे की धीमी बोली कोयल मजी

ছাগলি মরা কালে ও তো হারে কি মিঠি বলি কোয়েল।

0: छोरा रे मर गए रे मसमु मन झगड़ो बिनय
1: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 गीगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए ले चलते हैं हम आपको फिल्मी गीतों की दुनिया में आन मिलो सजना के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आन मिलो सजना। इसका गीत इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोता आकाशवाणी जैसलमेर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लाए हैं फिल्म अमर अकबर एंथम से।

0: स्वामी सम सच बोला है वो हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें
1: बोलो तो जीने बना मर जाए।

0: रहे दिया में हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे
1: बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे
0: दिल में दिल भर तू रहता है

0: कब छुपाए रखा, शोला दबाए रखा,
1: कब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा।
0: हुस्न हमेशा रुका रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है। हम

हमें प्यार क्या करें, बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हम तो तुमसे हो गया है प्यार क्या करें।

0: Моя тоді поляна, пам'ятає антатум си.
1: Мене?

0: सपने सुरीले।
1: श्रोता, मुकेश की आवाज में अभी आपने एक गीत सुना। फिल्म का नाम था आनंद। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं आनंद आश्रम इस फिल्म से।

श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज़ में अमर प्रेम फिल्म का गीत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गुलजर सिटी चैनल FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंदन दास की गाई हुई गजल।

उजालों की परियां नहाने लगी। उजालों की परियां नहाने लगी, नदी गुनगुना

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत चंदन दास की गाई हुई गजल। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। अब से कुछ ही देर में यानी रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे इवनिंग न्यूज, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
2: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की

0: शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गई। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। विशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026.

सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलाना जान कर।

0: जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम था खिलौना। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति के रूप में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का ही गाया हुआ शागिर्द फिल्म का ये गीत।

0: बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे
1: यही तो मालूम नहीं है
0: हमसे सुनो।

सबसे पहले सुनो मियां, करके वर्जिश बनो जवां। सबसे पहले सुनो मियां, करके वर्जिश बनो जवां। चेहरा मालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो। स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ किबला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबां बड़ मियां दीवाने। ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे।

उसी को करतब नए नए फैशन के ढब नए नए सीखो करतब नए नए फैशन के ढब नए नए ढीला ढाला लिबास क्यों रेशम पहनो कपास क्यों फन ये जादूगरी का है अरमा तुमको परी का है तो किपला मारो मंत्र टेटी बनकर निकलो वक्त याम बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो।

शागिर्द फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। राजस्थानी लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कूटल खान और पठान खान के गाए हुए लोकगीत। श्रोताओं, लीजिए पहले सुनिए कूटल खान के गाए हुए लोकगीत।

एक नाग दूजी नागनी तीजी कंस की माँ तीनों जनों संबड़ी नहीं रजा।

तू बड़ो नाड़ी नाड़ी ने जाने बेद तू बड़ो नाड़ी बीड़ी छोड़ बेद भी मुही

गोकलामो बसे कौन, वो से मेरी यारी है, उसी को बुलाओ या वही वेद भारी है। नाड़ी नहीं जाने तुम बटो नाड़ी, नाड़ी नहीं जाने तुम बटो ये नाड़ी, बीड़ी छोड़ वेद भी।

प्यारे नाग नाचो शेष कलाधारी है, दाशमी रो लाल गिरधर, दाशमी रो लाल गिरधर।

ಐರುತ್ ಶಿರೋಮಣರಿ ಶಿರೋಮಣರಿ ಹಮಕಿ ಪೀಯರ ಮೇ ಭಾಯೋ ಭೂಲಿ ಭೋಜಾಯೋ ಭೂಲಿ.

তোর জমারি হালে পাতি রে রে তোর জজিনী হালে পরদেশী রে।

मेरा पड़ोसी मन याद घणीरा साजन ऐसा कीजिए साजन

ਡੇਰਾ ਬਾਝ ਤੁਰੀ ਅਮਲਾ ਬੇਲਾ ਪਨਾ।

0: padikho karakara lava।
1: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओ, इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं दो रास्ते संग से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

से झुक जाएंगी जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी सारी बातें यही बस रुक जाएंगी चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बता।

जानते हैं वो जानते हैं तुम्हारी बातें, तुम कह लो शर्म इसको।

गंगा की लहरें, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की ही आवाज में। फिल्म है लावारिस।

क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ वो खुदा ही जाने, अब होगा तेरा अंजाम क्या। काहे पैसे पे इतना गुदूर कर है, काहे पैसे पे।

पैसे की अहमियत से तो इनकार नहीं है, पैसा ही मगर सब कुछ सरकार नहीं है। इंसान इंसान है, पैसा पैसा

है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये नशा कोई, ये नशा कोई धोखा।

बाजारों में प्यार कहाँ बिकता है, दुकानों पे यार कहाँ बिकता है। फूल बिक जाते हैं, खुशबू बिकती नहीं, किस्म बिक जाते हैं, रूह बिकती नहीं, चैन बिकता नहीं, ख्वाब बिकते नहीं, दिल के अरमान बेताब बिकते नहीं। अरे पैसे से क्या क्या तुम यहाँ

का मोल क्या दोगे उन घटाओं का, मोल क्या दोगे इन जमीनों का, मोल हो शायद आसमानों का, मोल क्या दोगे पास पैसा।

मानो यकीन, ये दिमागों में ये दिमागों उर करे है, यही पैसा तो अगर है दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गरूर करे है, गरूर करे है।

गोरा ये अंतोरा है पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, किस्मती में सूझे ना कर डालू हाल मोहे समा।

कारवां फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। श्रोताओं लीजिए सुनिए भीगी पलके इस फिल्म का ये गीत, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

अभी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो, भोली हो तुम क्या जानो, अभी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो।

दादी माँ इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए आराधना फिल्म का गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, सपनों की रानी कब आएगी तू, कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब

प्यार की गलियां, बाहों की चलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी।

दिल के पास आ, दिल के दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे चढ़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगी।

आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी।

0: Java.
1: Hi. हम का फसाना बन गया अच्छा
0: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
0: अच्छा

0: देखो बातों बातों में चांदनी रातों में ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा
1: अच्छा भी
0: एक बहाना बन गया।

0: चंद अच्छा एक कहाना बन गया अच्छा।
1: मनचली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में बातों बातों में फिल्म का ये गीत जिसे गाया है अमित कुमार और आशा भोसले ने।

0: तुम न मैंने कुछ कहा कहा
1: मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा
0: के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई
1: प्यार की मिला के ही सुने ही बात हो गई
0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा।

0: मेरे कदम।
1: किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता।
0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा
2: मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
0: के धूप में खिला है चांद दिन मेरा।

0: तानसेन।
1: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा,
0: कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
1: लगा
0: लगा
1: लगा के धूप में खिला चांद दिन में रात हो गई।
0: चांद की बिना परी सुने ही बात हो गई।

0: ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई
1: सुलझ गई सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई।
0: न बोलिए कि बोलने कुछ नहीं रहा।

0: जाने तुमने मैंने कुछ कहा
1: मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा
0: दिन रात हो गई
1: ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोता आपसे कुछ ही देर में यानी रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से डिले करेंगे।

0: आदि नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है।

आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC और अमरीकी सैनिक सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहली बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।